0: समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे यहाँ.
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते.
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा.
1: मैम वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं पता.
2: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल देखो, ये हीर तो सैड नहीं, बड़ी खुश है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई, जब दो दिन का अच्छा खासा आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उसके बाद से तो खुशी खुशी हम ऑफिस आ जाते हैं, चल जाते हैं। मतलब यार, आई रियली फील दैट संडे शुड बी हैप्पी डे। मतलब अगर आप संडे को अच्छे से शुरुआत करोगे, खुशी से शुरुआत करोगे ना, तो आपका दिन तो अच्छा जाएगा ही, और यकीन मानो आपका ना हफ्ता भी अच्छा जाएगा। और मेरी ट्रिक मान लो कि जब भी आपका ना संडे बोर होता है ना ऑफिस जाने के लिए, कि अरे यार अब इतनी आराम कर ली, अब क्या कैसे ऑफिस जाना, तो मेरा ऐसा एक पैतरा है कि मैं संडे के दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ। मतलब व्हेन यू आर ड्रेस्ड योर बेस्ट, यू फील गुड अपने आप। ठीक है, आज का संडे के लिए तो हो गया, लेकिन आज का वेदर क्या कहता है कतर में, ये जरा देख लेते हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट।
1: वेल, वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मिनिमम 31 तक जाएगा, और अभी जो महसूस कर रहे हैं आप, ये 36 डिग्री सेल्सियस है। और लगभग ये जो वेदर के आंकड़े हैं, ये पिछले एक हफ्ते से जब से मैं आई हूँ तो मुझे यही लग रहे हैं। सो अच्छी बात है कि ह्यूमिडिटी कम चल रही है आजकल, 34% पर, जो काफ़ी कम है। 8 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही है, वो भी धीमी धीमी सी है। ऑल इन ऑल आदत तो हो गई है, अब और क्या चाहिए भाई। ठीक है, चला लेंगे, क्या कहती है पब्लिक।
0: Check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ राइट हियर। देखो अक्सर वीकेंड पर जाने से पहले मैं ये बात करती हूँ कि भाई वीकेंड पर क्या करना चाहिए, कतब में क्या कर सकते हैं और OTT चैनल्स पर क्या आया है देखने के लिए। और अब वीकेंड से होकर मैं ये बताने आई हूँ कि भाई मैंने क्या किया है वीकेंड पर। वैसे तो पहले तो ये बता दूं भाई मेरा तो दावतों का सिलसिला चल रहा है क्योंकि मैं हज पर गई थी, तो उसके बाद से मुझे जो दावतें मिल रही हैं और 2 हफ्तों से वही चल रहा है, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉयिंग इट। और उसके अलावा यहाँ पर वेदर इस तरह से चल रहा है कि भाई शाम के वक्त हम बाहर जा सकते हैं लेकिन दिन के वक्त नो, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये आप स्टंट ट्राई भी नहीं करना कि अगर वीकेंड भी है, कुछ भी है, वक्त है आपके पास, दिन के वक्त पर आराम कीजिए और शाम के वक्त पर बाहर निकलिए। ये तो बताया मैंने मेरा वीकेंड प्लान आपको क्या था, आपका क्या था, किस तरह से आपने वीकेंड गुजारा है डिस्पाइट ऑफ दिस वेदर। लेट मी नो 5000 1896। और गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं और थोड़ी देर में जरा खबरें शबरें भी लेकर आती हूँ राइट हियर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। करण सैम्बी की आवाज़ में अगला गाना ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आप चीन के साथ। इट्स हॉट।

0: Well, Anand Rajanand aur Rubai ki awaaz mein ye gana from the new movie Welcome to the Jungle. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और कल जिस तरह से हमारे कतर में एक एनर्जी थी, एक एक्साइटमेंट थी और वो बिल्कुल खरी उतरी है. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 और कल कतर की फर्स्ट मैच थी और ये मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ थी जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन साइड है. और हमारे अल अनबी ने एक स्ट्रॉन्ग वन ऑन वन का एक ड्रॉ सिक्योर किया. भाई जबरदस्त मजा ही आ गया. मतलब दोनों के एक एक गोल्स हुए हैं और अब इस तरह से है ना कि भाई चलो पिछली बार 2022 में जिस तरह से कतर वॉज अ होस्ट कंट्री तो उन्हें खेलने का मौका मिला और इस तरह से दुनिया परसीव कर रही थी कतर को. लेकिन नो माय फ्रेंड्स, कतर पिछले कुछ टाइम से एएफसी एशिया कप जीत चुका है. बैक टू बैक कुछ सालों से ये जीत रहा है और अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बनते जा रही है और ये कल उन्होंने प्रूफ कर भी दिया है. वेल, कैप्टन अकरम अफीफ और अल मोइज अली जैसे प्लेयर्स ने एशियन फुटबॉल में कतर को एक जेन्युइन फोर्स तो बना ही दिया है, लेकिन अब वर्ल्ड के सामने प्रूव करने का टाइम यहाँ पर इनका आ गया है. और कल कई काफी हद तक इन्होंने प्रूव भी किया. अब तो आगे वक्त बताएगा कि भाई कहाँ तक. उम्मीद तो यही है कि भाई कतर और भी आगे जाए डार्क हॉर्स की तरह इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में. लेकिन नाउ द नेक्स्ट मैचेस ऑफ कतर इज अगेंस्ट कनाडा एंड बॉस्निया हर्जेगोविना. बस ऑल द वेरी बेस्ट अल अनबी, वी आर विथ यू. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट रन विद शी इट्स हॉट.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
2: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
1: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
2: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है.
3: मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल में पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल के सर बोल.
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Well, देखो दिलजीत पाजी और धी मिलकर यहाँ पर हमें बिल्कुल सही काइंड ऑफ संडे मॉर्निंग की एनर्जी दे रहे हैं विद देयर सॉन्ग. कौन सा गाना है ये, क्या नाम है इसे, नैन मटक का नाम तो है इसका. लेकिन यार भाई मेरी सुबह ऐसा लग रहा है कि भाई अब तक हुई नहीं है बट आपकी हो गई है. हम और दोनों मिलके यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जोरदार सुबह करेंगे. लेकिन मिर्ची मॉर्निंग्स में फिलहाल वक्त हो चला है 7:16.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और जानते हो कि भाई आज मेरी नींद कम होने की वजह क्या है? भाई कतर है, अल अनाबी टीम है, मतलब कल देर रात तक ये मैच चली और ये मैच मैं घर पर देखती रही और उसके बाद में बस क्या नींद हमें मिली नहीं है. क्या मेरे जैसे भी आपका हाल है कि मुझे बताइए भाई 5000 1896 किसने ये मैच लाइव कल देखा है. और वो जो गोल था भाई आखिरी मिनट वाला गोल, क्या एक्साइटमेंट. वो सोचिए मतलब मुझे तो आसपास से चिल्लाने की आवाज आई, मेरे घर में तो लोग चिल्ला ही रहे थे. लेकिन यस आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, होना भी चाहिए एक्साइटमेंट. आफ्टर ऑल हमारे टीम अल अनाबी कतर का ये पहला गोल है ऑफ लाइक फुटबॉल वर्ल्ड कप. यस सो भाई एक्साइटमेंट पूरी की पूरी तरह बिल्कुल जायज है यार. अब ये गोल करने से ये हो गया है कि भाई हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं. अगली जो मैचेस आने वाली है उससे और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं. जैसे अगली मैच जो है बोस्निया वर्सेस हर्जेगोविना के बीच में है कतर की, और देखते हैं कि भाई आगे ये जो मैजिक है जो कतर ने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट चलाया. एंड स्विट्जरलैंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी स्ट्रांग यूरोपियन टीम. अब जब यहाँ पर ये मैजिक चल सकता है, एशिया कप में कतर का मैजिक चल सकता है, तो आगे क्यों नहीं भाई डार्क हॉर्स बनकर आगे जाएंगे हम. फिलहाल तो भाई हवाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना और मिर्ची सॉन्ग.

0: Well, मुझे तो पता है कि भाई कुछ लोग आज लेट चल रहे हैं ऑफिस की तरफ, और वजह शायद सेम है हम सबका. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई कल रात को जिस तरह से हमारी टीम कतर ने खेला है ना, बस दिल तो खुश हो गया, लेकिन उसके बाद में हमारी जो बॉडी है वो शायद हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है. और आज मेरी तरह मैंने कहा कि भाई आज मुझसे नहीं हो पा रहा, तो सुबह में उठ रहे और फिर लेट हो गया, और फिर यहाँ पर भी मैं अभी तक पूरी तरह से होश में आई नहीं हूँ. लेकिन ऐसे ही एक और है जो सेम फीलिंग शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. हेलो,
1: हाय, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: और आपके सभी लिसनर्स को.
0: जी
1: जी जी, बिल्कुल मेरा भी वही हाल है. लेट नाइट मैच देखता रहा, फिर जो है अभी सुबह मैं एक्चुअल टाइम में पहुंच भी नहीं पा रहा हूं, अभी रास्ते में ही हूं ड्यूटी के लिए. सो जी बिल्कुल देखा, वो लास्ट एक दो मिनट पहले जो गोल करी, वाओ व्हाट ए गोल,
0: है ना, जबरदस्त था.
1: जो मैच किया ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे, वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो गेम का लेवल जो खेला है गेम कतर ने, वो बहुत ही जबरदस्त खेला है, बहुत ही उमदा गेम खेला है.
0: एब्सोल्युटली सही बात है यार.
1: आगे और भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह.
0: बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर करेंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू फॉर योर मैसेज. और बस आप सही सलामत जल्द से जल्द ऑफिस पहुंच जाए भाई, लेट चल रहे हैं. और इन्हीं की तरह अगर और भी कोई है जो कल के मैच की वजह से लेट चल रहे हैं ऑफिस के लिए, लेट मी नो बाय 0001896. तब तक के लिए मिर्ची मॉर्निंग्स पर आप सुन रहे हो माइक से दिल तक आफरीन को.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: एंड कमिंग अप ट्रैक हिमेश रेशमिया कृष्णा अहिर की आवाज में. One of my favorite tracks, yaar. Enjoy it right here on Mitchie. It's hot.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई. मिष्टी दोई संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है.
1: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है. मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने.
0: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी. Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मनमर्जिया का ये गाना ग्रे वाला शेड मुझे बहुत पसंद है, हर्षदीप कौर और जाजिम शर्मा की आवाज में। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। देखो आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आफरीन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लाओ। देखो मैंने आज डिफिकल्ट क्वेश्चन लाया है, वो इस तरह से डिफिकल्ट लग रहा है मुझे कि देखो है तो किंग खान का डायलॉग है। मैं पहले ही कह रही हूँ भाई, किंग खान की आवाज कौन नहीं पहचानता है। सो वेल किंग खान का डायलॉग है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होगा आपको कि भाई ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर रहती ना ऑनेस्टली मेरे लिए डिफिकल्ट होता है ये पहचानना। लेट मी से आप लोग के लिए कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए रेडियो सेट्स की वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से ये डायलॉग सुनो और बताओ भाई आखिर ये कौन सी मूवी से है।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है।
1: ओके, ये मौका मैं भी आपको दे रही हूँ कि जिसमें आप विनर बन सकते हो। 5000-1896 इज द नंबर। बताइए आखिर ये कौन सी मूवी से है। सोच रहे हो ना, सोचो अरे यार ये तो ये मूवी का भी लग रहा है, फिर तो ये मूवी का भी लग रहा है, पर ये है कौन सी मूवी का। पता है मुझे, गलत आंसर्स आर फ्लोइंग इन। आज बड़ा मजा आने वाला है भाई। तब तक के लिए चलिए मोनाली ठाकुर की आवाज में और बोलो आफरीन को कि डिफिकल्ट वाला चाहिए आफरीन। ये लो माइक से दिल तक और मिर्ची इज हॉट।

0: emergency helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूं?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: हर
1: टेल मी
2: सर, कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
1: ओ माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8:05 की तरफ और अगला गाना इंतजार कर रहा है आपका तड़कती भड़कती नई मूवी से, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो, अगर मैं कहूँ कि कतर की एक ऐसी अचीवमेंट आई है जो ना फुटबॉल से जुड़ी है ना ऑयल और गैस से, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और कतर की एक बड़ी अचीवमेंट सामने आई है।
2: क्या खबर कतर?
1: दैट कतर का हमद पोर्ट एक और बड़ी अचीवमेंट लेकर आया है। वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमद पोर्ट ने 8th रैंक ग्लोबली और 2nd रैंक गल्फ रीजन में हासिल की है। क्या बात है। देखिए, अब ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्त, ये बताती है कि दुनिया भर के शिप्स को लोड अनलोड करने में पोर्ट कितना फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल है। मतलब जहां दूसरे पोर्ट्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस, शिपिंग रूट डाइवर्जन्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से जूझ रहे हैं, वहीं हमद पोर्ट ने अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव की है। देखिए, जब हम सुपरमार्केट से कोई इम्पोर्टेड चॉकलेट उठाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करते हैं या शोरूम में लेटेस्ट कार देखते हैं, उस जर्नी के पीछे कहीं ना कहीं हमद पोर्ट का रोल होता है। कतर के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का मेजर हिस्सा इसी पोर्ट से गुजरता है। और एक फैसिनेटिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं तो 2017 के ब्लॉकेट के बाद हमद पोर्ट ने कतर की इकोनॉमिक रेजिलियंस का सिंबल बनकर दिखाया है। आज की रैंकिंग उसी लॉन्ग टर्म विजन का रिजल्ट है। दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल स्ट्रेटजिक फोरसाइट। मैं हूं आफरीन आपके साथ, बस इसी तरह से अचीवमेंट्स हेडलाइन के और लेकर आते रहूंगी यहां पर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। बने रहिएगा माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: यार, बहुत बढ़िया।
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी।
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन वगैरह
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है, आप ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
3: सर? पुराना जो आपने
2: पुराना तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे
2: क्या हो रहा?
3: अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप।
2: पेट्रोल फालतू का, पुराना लाओ,
4: सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता।
3: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बिल्कुल बेस्ट एक्सचेंज रेट लेकर आया है आई पे, और वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ। वेल देखिए, जैसे आज के एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 26.09 रुपीस, वहीं आपको एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस 76.73, एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं बांग्लादेशी टाका 33.76, एक कतरी रियाल के बदले आपको श्रीलंकन रुपीस मिल रहे हैं 90.87 और नेपाली रुपीस मिल रहे हैं 41.89। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर माइक से दिल तक आप रीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट, अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला गाना द टाइटल ट्रैक ऑफ एडल है मुश्किल ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हाँ जी, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:41 पर और मेरा इशारा हो रहा है आज के गेम की तरफ। ये चलिए वक्त चला है कि भाई मैं आपको कहानी सुनाऊं एक मूवी की और आप तो गेस करना है कि आखिरकार आफरीन कौन सी है वो मूवी की कहानी सुना रही है। सो रेडियो सच की वॉल्यूम करो हाई फटाफट से और ये कहानी सुनो। चलो देखिए, एक लड़का है, लंदन में स्ट्रीट म्यूजिशियन है, गिटार बजाता है और जॉब्स करता है और फिर एक दिन उसे एक रिच ब्यूटीफुल लड़की मिल जाती है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, फ्यूचर सेट लगता है, तब लाइफ और एक प्रॉमिस्ड गॉड बीच में आ जाता है। एक एक्सीडेंट, एक हार्ट ब्रेक और लड़की एक ऐसा डिसीजन लेती है जो दोनों की ज़िंदगी के डायरेक्शन ही बदल देता है। सालों बाद तो वही लड़का अब इंडियन आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट बन जाता है, मतलब लोग जहाँ से भागते हैं ये बंदा वहाँ चलता है। बॉम्ब देख के डरता नहीं है, इमोशन से ज़्यादा डिस्टेंस रखता है और ऐसा लगता है जैसे उसने हार्ट ब्रेक को प्रोफेशन बना लिया हो। फिर एंट्री होती है एक यंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की जो उसकी रिकॉर्ड करती है स्टोरी और वही रिकॉर्ड करते करते एक हिडन चैप्टर भी डिस्कवर कर लेती है। बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में, आप बताइए वैसे ये मूवी कौन सी है। 5000 1896 यहाँ पर मैसेजेस आने तो हो गए हैं शुरू, चलिए मैं इनका जवाब देती हूँ। आप जो है मुझे यहाँ पर मैसेज करते रहिए 5000 1896 और अगला गाना भी सुन लीजिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। यह अगला गाना शाम शानदार इस खूबसूरत सुबह में माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
2: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood
3: Boldal. Only on Mirchi. It's hot. Arz kiya hai.
4: Irshad, Irshad.

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार स्काई ज्वेलरी डिजाइन फॉर जनरेशंस
5: Refreshment partner, Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner, Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner, Rehab Media.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है। राइट हियर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ। और एक ऐसा डायरेक्टर जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी एक मूवी डायरेक्ट की है अपनी आखिरी सांस तक, कहते हैं ना, बस ऐसे ही कुछ मूवी कहानी मैं लेकर आई थी। राइटर आपके साथ में गेम खेल रही थी, वो कौन सी मूवी है, मतलब इतनी बड़ी हिंट मैंने फिलहाल आपको जो दी है उससे तो आप समझ गए होंगे कि आफरीन किस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया है तो भाई कहानी सुन लीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि वो क्या कहती है, देखिए कहानी में एक ऐसा लड़का है जो लंदन की गलियों में म्यूजिशियन है। फिर ऐसा एक दिन आता है जब उसे एक रिच ब्यूटीफुल लड़की मिल जाती है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, फ्यूचर सेट लगता है, तब लाइफ और एक प्रॉमिस टू गॉड बीच में आ जाता है। एक एक्सीडेंट, एक हार्ट ब्रेक और लड़की एक ऐसा डिसीजन लेती है जो दोनों की जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देता है। सालों बाद वही लड़का अब इंडियन आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट बन जाता है, मतलब लोग जहां से भागते हैं ये बंदा वहां पर चल कर जाता है। बॉम्ब देख के डरता नहीं है, इमोशन से ज्यादा डिस्टेंस रखता है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हार्ट ब्रेक को ही ना प्रोफेशन बना लिया हो। बताइए कौन सी मूवी की कहानी बोल रही है आफरीन। 5000196। काफी सारे जवाब यहाँ पर आए हैं। फिलहाल के लिए तो अदनान का मैसेज आया है, मनाली, आपने इस बार गलत जवाब दिया है। मोहम्मद यूसुफ खान का है, जाहिद का मैसेज है, आई हैव ताहिर का मैसेज आया है और सभी ने बिल्कुल सही कहा है कि यार आफरीन जो तुम मूवी का नाम कह रही हो वो है जब तक है जान। जी हाँ, वो मूवी जहां पर यश चोपड़ा जी की आखिरी डायरेक्टोरियल मूवी थी, मतलब 80 इयर्स की उम्र में उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की थी और बड़ी खूबसूरती से की थी। यार आई लाइक द मूवी का जो एक लार्जर देन लाइफ एक दिखाता है ना यश जी का, एक अलग ही तरीका है, बहुत ही ड्रामेटिक तरीका है अपना अंदाज बयां करने का मूवीज का, एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। जब तक है जान विद ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक्स, विद ब्यूटिफुल लोकेशंस एंड ऑफकोर्स खूबसूरत हीरोइंस तो इनकी मूवी में होनी है ना यश जी के, एंड शाहरुख खान के बगैर कोई मूवी कैसे पूरी हो सकती है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: 90s के तड़के के साथ एक नया गाना पेश किया गया है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स चुनरी चुनरी लेट्स गो। और चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स आगे की बात, लेकिन उससे पहले जरा वक्त मिला लेते हैं। मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: मुझे सुनने वाले सारे पेरेंट्स जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की खबर आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की खबर,
2: क्या खबर कतर?
0: कुछ ये कहती है दैट कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक नई स्कूल फीस पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी प्राइवेट स्कूल की फीस इंक्रीज अप्रूव होती है तो उसका असर पेरेंट्स पर तुरंत नहीं पड़ेगा। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन कतर पेरेंट्स को मिलने वाले हैं पूरे 18 मंथ्स का नोटिस पीरियड बिफोर द न्यू फीस एक्चुअली किक इन। मतलब अगर फी हाइक अप्रूव हो भी गया हो तो आपके पास 1.5 साल होगा अपना बजट प्लान करने के लिए, बच्चे को उसी स्कूल में कंटिन्यू करवाना है या किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। नो सडन सरप्राइजेस एट ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए फीस इंक्रीज अप्रूव करने से पहले मिनिस्ट्री स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन रेट भी इवैल्यूएट करेगी। सिंपल वर्ड्स में, सिर्फ हमें फीस बढ़ाना है कहने से काम नहीं चलेगा, देयर हैज टू बी अ मेजरेबल जस्टिफिकेशन। देखिए, दुनिया भर में एजुकेशन इन्फ्लेशन एक रियल चैलेंज बन चुका है। पेरेंट्स ऑफन फील करते हैं ट्रैप्ड बिटवीन क्वालिटी एजुकेशन एंड राइजिंग कॉस्ट, लेकिन कतर का ये मूव एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस समथिंग, इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसे फाइनेंशियल प्रेडिक्टेबिलिटी। और बिलीव कीजिए, देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी is often more valuable than affordability itself, क्योंकि जब आपको पहले से पता हो कि ठीक है 18 महीने बाद क्या होने वाला है तो पैनिक की जगह जाहिर सी बात है लोग प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। मतलब साथ ही साथ अगर फीस इंक्रीज भी हो रही है तो काफी अच्छा वक्त दिया है फॉर द पेरेंट्स आउट देयर। तो सुन लिया ना आपने, मैं हूँ आप फ्री आपके साथ माइक से दिल तक राइट अराउंड मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabala. Burka, burka. La vida para la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो नवनीत
1: yeah.
2: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: चलिए दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर कोई आपसे पूछे कि कतर की पहचान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे हॉस्पिटैलिटी, शायद आप कहेंगे फैमिली वैल्यूज, शायद अरबिक लैंग्वेज, या फिर वो ट्रेडिशनल अटायर जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक कहानी है, एक विरासत है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल आइडेंटिटी की, और इसी सिलसिले में हिवारी इनिशिएटिव एक बहुत ही अहम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहा है। आज जब दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, तब अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोग्रेस करना जरूरी है ऑफकोर्स, लेकिन अपनी रूट्स को याद रखना भी उतना ही जरूरी है ना। हाल ही में हमने देखा कि कतरी कल्चर और ट्रेडिशनल अटायर को यूनाइटेड स्टेट्स में प्राउडली इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिर्फ कल्चरल प्रमोशन नहीं था, ये एक मैसेज था ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप। देखिए, अ नेशन बिकम्स मेमोरेबल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट इट बिल्ड्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट इट प्रिजर्व्स। और यहाँ पर ना मीडिया का रोल ना बेहद पावरफुल हो जाता है। मीडिया सिर्फ हेडलाइंस नहीं देता, मीडिया स्टोरीज को जिंदा रखता है, मीडिया जनरेशन को कनेक्ट करता है, और मीडिया दुनिया को बताता है कि हम कौन हैं, किन वैल्यूज पर खड़े हैं। जब हम लोकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जब हम हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम यंग जनरेशंस को अपनी कल्चर से जोड़ते हैं, तब हम सिर्फ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम बिलोंगिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर तक की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि मुल्क इनोवेशन और हेरिटेज इन दोनों को साथ लेकर चल रहा है, फ्यूचर की तरफ देखते हुए भी और अपनी पहचान को मजबूती से थामे रखते हुए भी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कतर। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये लोग कहते हैं कि दिल से नहीं दिमाग से फैसले लो। हर चीज सोच समझ कर करो, दिमाग से फैसले लो। कहीं ना कहीं बात ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन एक जगह है जहां ये बात आकर बिल्कुल फेल हो जाती है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: वो कहते हैं कि सोच लेना था मोहब्बत करने से पहले। उन्हें क्या पता कि सोच कर साजिश की जाती है मोहब्बत नहीं। क्या बात है ना, मोहब्बत अगर कैलकुलेशन बन जाए तो शायद रिश्ते रह जाते हैं, मोहब्बत नहीं रहते। क्योंकि मोहब्बत कभी प्लानिंग करके तो नहीं होती, वो तो बस हो जाती है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। अनमर्शी, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तू मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

Well, ऐसा होता है ना कि कुछ आवाज सुनकर ही चेहरे पर एक मुस्कान आती है. प्रोबेबली जुबिन नौटियाल की आवाज में वो जादू है. एक हल्के से वॉर्मथ है, एक हल्का सा नशा है और बड़ी खूबसूरत आवाज जुबिन नौटियाल की आवाज में. गाना अभी आपने सुना, साथ देती हुई तुलसी कुमार. और बस हमारी भी यही उम्मीद रहती है कि सुबह जो है आपकी एक हल्की सी मुस्कान से ही एटलीस्ट शुरू हो जाए जब आप ट्यून इन करें 89.6 पर मुझे यानी सिंपली आफ्टरनून को. और देखिए मेरा आज का जो कोटा है आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने का, वो आज के लिए होता है खत्म. और बस आई थिंक सो इतना सा डोज तो काफी है आज का दिन गुजरने के लिए, है ना. तो बस मिलेंगे ना फिर कल मिलेंगे सेम टाइम सेम शो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपकी माइक से दिल तक आफरीन के साथ. आधा महीना जो है खत्म होते हुए यहाँ पर 14th of June लेती हूँ अलविदा. टाटा बाय बाय सायोनारा. और एंट्री होने वाली है एक ऐसी लड़की की जो बिल्कुल तूफान लेकर आएगी, मिठास भी लेकर आएगी और मिर्ची भी लेकर आएगी राइट हियर 89.6 मिर्ची 1. अंशु का इंतजार करिएगा और उसके लिए बस गाना, अगला गाना विशाल ददलानी के नीति मोहन और पप्पीदा की आवाज में सुनते रहिए.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: कयामर खान और अलका याग्निक की पावर पैक आवाज एंड क्या गजब का गाना यार। मतलब ये गाना ऐसा है जो 90s का शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसने पूरे स्वैग के साथ चलते फिरते अपनी लाइफ में कभी ना ही गाया हो। वैसे मैं क्या बोलती हूँ ये बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले आपको फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर दूँ, मिर्ची घड़ी को अगर देखने की कोशिश करें तो वक्त जो है काफी कमाल हो रखा है। बज चुके हैं 10:04।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बात मैं नहीं, अब आपको कोई और बताएगा।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का घोलने एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन आफरीन क्या बोलती तुम? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, वीकेंड में किया तो क्या ही किया, एंड इस बार का वीकेंड जरा लॉन्ग लगा रहा है, मेरी ये फीलिंग है, तुम्हारा क्या हाल चाल है?
3: मैंने बताया आज कि मेरा वीकेंड ऐसा था, मेरा खातर पीता वीकेंड था, क्योंकि हद से आए हैं तो बहुत सारी दावतें मिल रही हैं, तो मेरा वीकेंड तो 2-3 दावतों में ही गुजरा है। सो मतलब बिल्कुल आई जस्ट हैड फूड कोमा, आई कुड से
0: She literally had the time of her life. मतलब अच्छा खाना, दोस्त यारों से मिलना, वो भी फैमिलीज के साथ, इससे बेहतर तरीका और क्या ही हो सकता है जिंदगी के हर एक दिन को बिताने का। बढ़िया है, तो आफरीन ने तो बहुत ज्यादा मजे किए। मैं यार, मेरे लिए वीकेंड ठीक ही रहा, मतलब अच्छा ही रहा, खाया पिया घुमा फिरा, दोस्त यारों से मिली। बस जो तुम्हारा हाल है भाई भाई, कहीं ना कहीं मेरा हाल है, बस थोड़ी सी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ जो वीक में मुझे पूरा करना है,
3: क्योंकि पता है मैंने बहुत लोगों ने आज अग्री किया मुझसे कि मेरी स्लीप डिप्राइव का रीजन बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि कल कतर की जो मैच थी रात तक चली, उस वजह से मेरी नींद नहीं हो पाई और फिर सुबह का सिलसिला 4:30 बजे से शुरू हो गया।
0: सबसे पहले मबरूक, बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बट सिंस आफरीन ने मेंशन किया यार, तो सबसे पहले सबको बधाई देना तो बनता है कि अगर इतिहास में देखने की कोशिश करें, फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में देखने की कोशिश करें, ना ही सिर्फ इस वक्त कतर ने पहली बार बकायदा टीम के लिए क्वालिफाई किया बल्कि अपना पहला गोल भी स्कोर किया, एंड वी कुडंट बी, एब्सोल्युटली वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। तो आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब जिसने मैच देखा, क्या आपने ऑनलाइन देखा, टेलीविजन में देखा, फैन जोन गए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, हाउ डू यू फील बीइंग अ कतरी? नहीं, मैं तो अब खुद को ना यहाँ का रेसिडेंट होने के बाद यहाँ का लोकल समझने लगी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतर या Mirchi Anshu, आइए वहां पे करते हैं कनेक्ट। लेकिन चूंकि आप मेरे दिल में हैं तो अरमान मलिक की आवाज में ये गाना आपको सुनाने तो बनता है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती है।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम प्रॉब्लम।
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 केजी एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम
2: हमारे, चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो।
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है।
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए।
3: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: वेल करण औजला की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, प्रॉपर आपके मूड को एलिवेट करने में ये गाना जो है कहीं कोई कमी ना छोड़ता।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ ही चुकी हूँ. एंड सच कहूँ यार, इस महीने को मैं देखने की कोशिश करूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ एक्साइटिंग एंड काफी कुछ खास जो है इस मंथ हम सबके लिए जरूर लाइंड अप है. देखिए, सबसे बड़ी बात एंड सबसे खास बात तो ये, फाइनली जिंदगी का वो महीना आ चुका है जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम किसी मोड में जाने वाले हैं तो वो है वेकेशन मोड. स्कूल्स को देखने की कोशिश करें. आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी 25th ऑफ जून जब बच्चों का इस सेशन का लास्ट स्कूल डे होगा एंड उसके बाद फाइनली एनुअल वेकेशन यानी कि छुट्टियों का फेज जो एक बार हमारी जिंदगी में फिर से ऐड होगा एंड इवेंचुअली अगले दो महीने जो है जिंदगी में राहत ही राहत है. बस यही जद्दोजहद, यही होड़ कि भैया फटाफट से टिकट्स बुक करो, जिसे जहां जाना है वो ट्रैवल करो. यार अलग खुशी होती है ना जब आप कहीं बाहर होते हैं, एक बार फिर से अपने घर जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, दोस्त या रिश्तेदारों से मिलते हैं, यू नो, इतने अरसे के बाद, इतने वक्त के बाद एक बार फिर से पुरानी बातें जो हैं कहीं ना कहीं से दोहराई जाती हैं, रिपीट होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है. एंड खासकर जब हम अपने घर जाते हैं ना यार, मतलब घर वालों का वो जो प्यार होता है कि वो हर वो एक चीज़ बनाते हैं जो आपको काफ़ी पसंद है. आपके फ्रेंड्स आपसे खासकर मिलने आते हैं एंड वो जो मुलाकातें होती हैं, वो जो बातें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार. मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में चाहे कितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, बिजी क्यों ना हो, या जिंदगी में कभी भी किसी कोने में कहीं पर भी मौजूद क्यों ना हो, यार उन लोगों के साथ कनेक्ट करना कभी ना भूलें जिन्होंने बचपन से आपका साथ दिया है या जिन्होंने बचपन के उन दिनों को आपके लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल बनाया है. फिर चाहे वो फ्रेंड्स हों, आपके टीचर्स हों, फैमिलीज हों, यू नो, ऑलवेज डू दैट. चलिए आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपको अपने बचपन का कोई टीचर याद है, यू नो, कोई गुरु, कोई टीचर जो आपका काफ़ी फेवरेट हुआ करता था या जिससे जुड़ी हुई आपकी कोई मेमोरी है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मेरे मैथ्स के ट्यूशन टीचर, उनका नाम अमित हुआ करता था, अमित सर, बहुत ज़्यादा याद आते हैं. मतलब मैंने मैथ्स में 10th में भी स्कोर किया था 99 एंड 12th में भी मेरे मार्क्स थे मैथमेटिक्स में 98 एंड ये मैथ्स से अगर मुझे प्यार हुआ तो वो अमित सर की वजह से हुआ था. हाउ अबाउट यू, ऐसा कोई टीचर है आपकी लाइफ में जिसने कभी बहुत डांटा हो या आपके बचपन के दिनों को बहुत खास ही बनाया हो? 5000 1896 messages, पर अब से कुछ देर में बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट खेलते हैं, क्या कहती पब्लिक. अरिजीत सिंह की आवाज अकासा का साथ एंड जब तलक, ये गाना हो जाए फिल्म फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम लापता लेडीज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। इस वक्त ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई खास बात है जो आप मुझे इस वक्त जरूर सुनाएंगे।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। लेकिन यार कोई फिल्म ऐसी है, कुछ तो बातें ऐसी हैं जो सही ना सही भाई जब जब हम सुनते हैं ना, कोई खास फ्लैशबैक मेमोरी में हमें लेकर चली जाती हैं। तो बस एक बार फिर से उन पलों को आपका और हमारा मिलके जीने का वक्त आ चला है।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: Alright then, कोई तो इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन है इस वक्त जो मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में मुझे ये बताएंगे कि ये बातचीत हुई तो हुई किस फिल्म में। बड़ी कमाल है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म जो है वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट 90s मूवीज में से एक है। तो इतना बता दिया कि नॉस्टैल्जिया में आप और हम मिलकर डाइव इन करने वाले हैं। तो जरा देखें कि ये है तो है क्या।
4: देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
5: कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम।
4: देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
5: रिश्ता, कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम।
0: Alright, तो क्या आपने इन दोनों एक्टर्स को पहचाना कि ये दोनों एक्टर्स हैं तो हैं कौन, एंड साथ ही ये कौन सी फिल्म है जिसमें कोई तो ये बात हुई है। यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिल्म है, जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। किसी का मैसेज आया कि अंशु जी एक बार प्लीज फिर से सुना दीजिए। यार डेफिनेटली, चलिए आपकी अगर दरख्वास्त है तो फिर से सुना ही देते हैं।
4: देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
5: रिश्ता, कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम।
0: भाई लड़कियां गले ना पड़ती, पहले तो ये बात आप समझ जाएं। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि ये है तो है कौन। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल ये अगला प्यारा सा गाना विशाल डिडलानी की आवाज श्रेया घोषाल का साथ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनिधि शोहन एंड दिव्य कुमार की पावर पैक आवाज एक बार फिर से एक रिक्रिएटेड वर्शन जिसने नॉस्टैल्जिया में हमें डाइव इन करने में मजबूर किया एंड साथ में गजब बेहतरीन एक्सपीरियंसेस का एक सैलाब जो है ना वो ले ही आया। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते आ चुकी हूँ। एंड हाँ भैया, अपने जमाने की बात करने की कोशिश जो है मैंने एक बार फिर से कर ली। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s का वो गोल्डन गॉर्जियस ब्यूटिफुल सा एरा। हैविंग सेड दैट, आपके बीच सबसे कुछ देर पहले एक खास कॉन्वर्सेशन मैंने पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। एक काम करते हैं कि इससे पहले कि हम सही जवाब बताएं, फटाफट से जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए जल्दी से हम ये फिर से प्ले कर ही देते हैं। एंड अगर आपको लगे कि भाई साहब अभी भी सुनते सुनते आपने पहचान ही लिया तो बस करेक्ट आंसर हमें भेज देना, लेकिन कहां, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। सो हियर वी गो।
1: देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
2: रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम।
1: देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
2: रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम।
0: हाय हाय, लड़कियां अगर गले ना पड़े ना तो आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से अधूरी पड़ जाए। वो बात अलग है कि शादी के बाद बीवी गले पड़ती है तो वो थोड़ा गले पड़ने लायक हो जाता है। जरा देखिए लोगों का क्या कहना की है तो कौन सी फिल्म है।
3: हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज मोहम्मद अख्तर। द नेम ऑफ द मूवी इज अंदाज अपना अपना, वन ऑफ द क्लासिक कॉमेडी मूवी डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी एंड द प्रोटोगोनिस्ट वर आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर एंड रवीना टंडन। थैंक यू।
4: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ध्रुव है और ये जो आपने क्लिपिंग सुनाई है इट्स फ्रॉम द मूवी अंदाज अपना अपना। द कैरेक्टर्स आर करिश्मा कपूर एंड हमारा भाई सलमान खान।
5: हाय अंशु, दिस इज शिबिका हियर। मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना, द एक्टर नेम इज करिश्मा कपूर।

0: एंड सलमान खान।
1: आइला आप सबने जो कहा ये तो पूरी तरह से सही है। पर लेकिन 90s के बचपन की हम बात करें और एक ऐसी फिल्म की बात करें जिसने जेन्युइनली हमें हंसा हंसा के लुटा दिया, तो उस फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। यार सच बताएं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अमर और प्रेम जैसे दोस्त हम सबकी जिंदगी में जरूर आए होंगे। वो बड़े बड़े सपने, पॉकेट में पैसे कम, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना भाई वो फुल, एंड शॉर्टकट्स ढूंढने की आदत जो है वो अनलिमिटेड। या 1994 में जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ये फिल्म लेकर आए, शायद किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म जो है एक दिन कल्ट क्लासिक बन जाएगी। एंड क्या स्टार कास्ट था, आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और भाई एक नहीं बल्कि दो दो कैरेक्टर्स में परेश रावल। लेकिन इस फिल्म के असली हीरो रहे पूरी तरह से उसकी राइटिंग। यार अगर आज भी जब आप ये सुनते हैं ना, तेजा मैं हूं, मार के धर है, या क्राइम मास्टर गोगो एंड आइला, भाई ये सारी बातें सुनते ना कहीं ना कहीं हम जो है अपने दिनों को याद जरूर करने लगते हैं। यार लेकिन पता है इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि जिस फिल्म के डायलॉग्स आज हर कोई दूसरा इंसान कोट करता है, वो फिल्म रिलीज के वक्त ना इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ही नहीं। लेकिन फिर ये टीवी पर आई, फिर दोबारा देखी गई, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, एंड धीरे धीरे पूरा देश जो है इसका फैन बन गया। एंड आज इसी वजह से अंदाज अपना अपना सिर्फ एक फिल्म नहीं है भाई, हमें उस जमाने की याद दिलाती है जब संडे को हम टीवी के सामने पूरे परिवार के साथ बैठकर किसी फिल्म को एंजॉय किया करते थे। उस वक्त रिमोट की लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि हर किसी का ठौर ठिकाना एक ही होता था। एंड एंटरटेनमेंट का मतलब वो ढेर सारा कॉन्टेंट नहीं, साथ बैठकर किसी फिल्म को अच्छी तरह से एंजॉय करना था। वो भी दिन क्या दिन थे यार। चलिए विक्की मेहता की आवाज में इस वक्त इस फिल्म का एक सबसे पॉपुलर ट्रैक अब तक पहुंचा दूं। गाना अच्छा लगे, कुछ याद आए, 90s पे पहुंचाए तो मुझे थैंक यू जरूर करना। 5000 1896 पे विल गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। साथ ही जितने लोगों ने लिखकर जवाब दिया, यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, फरहान थैंक यू, इशिता थैंक यू, टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु रेस्पोंडेड, बिग थैंक यू एंड लोड्स ऑफ लव। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अलका ससन की आवाज नीति मोहन का साथ कमाल खान का कमाल है थे आपने बुलाया और हम चले आए। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन सच कहूँ बिन बुलाए मेहमान की तरह इस वक्त ये जो हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं ना भाई, इनसे दूर रहना, इनसे जरा बच के रहना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टमक इन्फेक्शन द फ्लू विच इज क्वाइट प्रेवलेंट इन दोहा एट द मोमेंट। बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन कई एडल्ट्स में भी ये इन दिनों पाया जा रहा है। भाई ये एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पूरी तरह से आपके पेट को ना बेहाल कर देता है, डायरिया, नौजियान, वट नॉट। तो इतना ही कहना चाहूंगी इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो कोशिश करें जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाएं, बहुत ज्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेशन की बात करें तो बटर मिल्क जो है हमारी जिंदगी में ना इतनी बड़ी सौगात लेकर आता है, कंज्यूम इट एवरी सिंगल डे, चाहे मैं वाटर मिलन जूस की बात करूं या हाइड्रेशन में कोकोनट वाटर जो है हर सीजन के लिए काफी अच्छा है। और एक चीज जो डेफिनेटली बहुत मैजिकल काम करती है वो है सौंफ एंड मिश्री का पानी। अगर नहीं ट्राई किया ना ट्राई करके देखो, रात भर यानी कि ओवरनाइट मिश्री एंड सौंफ को आपको पानी में सोक करना है एंड सुबह सुबह खाली पेट जो है ना वो पी लेना है, या दिन में कभी भी पी लो यार, हो सके तो ना मिक्सर में इसे ग्राइंड करके पीना ताकि सौंफ की जो पूरी की पूरी ठंडक जो है ना वो भी आपके साथ अंदर में चले जाए। सो कीप योरसेल्फ फुली सेफ सिक्योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीटली हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज द की इस गर्मी के मौसम में। फिलहाल हम कतर में गर्मी के उस फेस को जी रहे हैं जो सबसे ज्यादा गर्म दिन माने जाते हैं, इसलिए जब आप शाम में भी निकलते हैं ना तो आपको एक अलग सी लू जैसी हवा महसूस होती है। 7th of जून को ये फेज शुरू हुआ, 13 डेज का ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहें यार। बाकी आपकी कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए आपको पता है एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है अंशु को, ओनली ऑन कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। ब्रांड न्यू ट्रैक जो है आपके रास्ते अगला लेकर आ रही, सुने बताएं लगा तो लगा कैसा।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, it's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है. कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे हो, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल के सर बोल.
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: मिर्ची, फ्रेश माल,
1: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ऑलराइट, वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यार।
2: मिर्ची अंशु
1: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन अगर इस वक्त वेलकम करने की बात करें तो भाई साहब इतना समझ जाएं, कतर के कोने कोने में कुछ इस तरह की चीजें इस वक्त चल रही हैं जो दिल खोल के आप सबका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, बेसब्र हैं। लेकिन यार सबसे खास इवेंट को इस वक्त आप देखें तो भैया इतना समझ जाएं कि ऐसा इवेंट है जो पूरी की पूरी यादें हमारी जिंदगी में वापस लेकर आ रहा है साल 2022 की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। बिल्कुल, इसका इंसेप्शन जो है कमाल से हो चुका है। हमारे जितने भी अलनाबी हैं उन्होंने पूरी तरह से जोर शोर से अपने परफॉर्मेंस को धमाकेदार तरह से दिखाने की कोशिश जो है वो शुरू कर ही दिया है। इसके अलावा पहली बार इतिहास में हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने अपना पहला पॉइंट स्कोर किया है, तो भैया एक बार फिर से इस बात के लिए जोरदार तालियां जो है ना वो बजनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही लेकिन बुलंदी की तरफ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पहुंच को और भी ज्यादा मजबूत करते ही जा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि कोशिश करने वालों की जो है ना वो जेन्युइनली हार कभी भी नहीं होती। एंड अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको फैन जोन में बैठकर ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर विटनेस करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अलमाहा आइलैंड जो है आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं 19th of July तक। कुछ इस तरह की फेस्टिविटीज हैं, फैन जोन एक्सपीरियंसेस हैं जो विजिट कतर हम सबकी जिंदगी में लेकर आया है, जहां पे मैच की स्क्रीनिंग्स भी होंगी, वाइब्रेंट एंटरटेनमेंट भी होगा, इनक्रेडिबल फूड भी होगा एंड अनबीटेबल वाइब्स। ये सारी की सारी चीजें जब एक छत के नीचे एक टेंट के नीचे आ जाए तो मजा ना आए तो फिर क्या ही आए। तो लगता है कि उन दिनों को एक बार फिर से जीना है। कोई ना जी, मेक्सिको, कनाडा, यूएसए ना पहुंच सके, कतर के फैन जोन में बैठकर तो वो एक्सपीरियंस ले ही सकते हैं। कब जा रहे हैं मुझे जरूर बताना, अकंपनी करने हम 101% आएंगे। टिकट बुक आप करना, एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो है हमारा। गुरु रंधावा की आवाज है यू हनी के साथ। खेल खेल में खेल की बातें तो हो ही गई, खेल का मजा भी ले लिया, अब इस फिल्म से ये गाना सुन लिया जाए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

Well, Raghav ki awaaz Tanishq Bakshi ka saath, and what a beautiful track it is. Ye khoobsurat sa gaana to maine aapko suna diya, lekin ek bahut hi pyare se initiative ke bare mein is waqt aapko bata diya jaye. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. लेकिन इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने जो बहुत ही खूबसूरत सी इनिशिएटिव शुरू की है, जरा उसकी बात भी हो जाए. वेल, दिस इज हैपनिंग इन पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन. एंड ये दोनों ही एंटिटीज ने मिलकर इस वक्त तकरीबन 54 गवर्नमेंट स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम शुरू किया है. दे हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम एंड इस इनिशिएटिव का अगर खास आप मकसद देखने की कोशिश करेंगे तो बस यही है कि बच्चों को पूरी तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी वेलबींग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज कंडक्ट की जाए, एंटी बुलिंग प्रोग्राम से बच्चों को सपोर्ट दिया जाए. एंड इसके साथ ही चाहे टीचर्स की बात हो, पेरेंट्स की बात करो, प्राइमरी स्कूल से लेकर प्रेपरेटरी के अलावा सेकेंडरी लेवल्स तक अगर बच्चों को किसी भी तरह का मेंटल कंसर्न है, उनकी वेलबींग में अगर कोई भी कमी है या उनकी मेंटल हेल्थ किसी भी तरह से इम्पैक्टेड हो रही है, तो उसे पूरी तरह से सतर्कता से सुधारने की कोशिश जो है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन ने मिलकर की है. एंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यार. देखिए, बात इतनी है कि आज की जनरेशन में भी ना, जहाँ पे एक तरफ फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम सब बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को आज भी एक टैबू की तरह लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है यार. जितनी ज़रूरी आपकी लाइफ में आपकी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ है. एंड अगर कभी भी ऐसा लगे कि ऐसी कोई बात है जिसे कहने से शायद आपके घर वाले ना समझ रहे हो, क्योंकि घर वालों को यूजुअली लगता है यार क्या बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जाओ लोगों से मिलो जुलो, कुछ काम काज करो, तुम्हारे दिमाग से सारे का सारा कचरा जो ना निकल जाएगा. नहीं भाई, ये कचरा नहीं है. जैसे शरीर को कोई तकलीफ होती है तो आप इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सलाह लेते हैं ना, वैसे अगर आपके इमोशंस या फीलिंग्स में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर की सलाह लेने में कहीं कोई गलत बात नहीं है. तो उसे डिस्करेज करने के बजाय इसे इनकरेज करें और उन्हें जिस तरह का आप सपोर्ट दे सकते हैं वो ज़रूर दें. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल. चलिए, इसी अच्छे थॉट के साथ कि हम सब हर तरह से हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को और अच्छा करते हुए अगला गाना आप तक पहुँचाती हूँ. दर्शन रावल की आवाज़, जॉनिता गांधी का साथ, फिल्म का नाम इश्क विश्क Rebound, and this track, enjoy, Bandi ka naam, Anshu.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मनाची लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मनाची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
1: श्रेयस यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Well, Banjari ki Power Pack Awaaz and what a lovely track it is. Ye khubsurat sa gana to is waqt maine aapko suna diya, lekin jo raat hame sone na de zara uski baat ho jaye.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mithi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. यार फुटबॉल में ना कुछ मोमेंट्स सिर्फ स्कोर लाइन से नापे नहीं जाते, पर कतर ने कल रात ऐसा ही एक मोमेंट क्रिएट कर ही दिया. वेल 90 मिनट्स तक फाइट, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस एंड

फाइनली इंजरी टाइम में एक गोल एंड उस गोल के साथ लिखा गया एक नया चैप्टर. वेल कतर हैज अर्नड इट्स फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट. क्या बात है यार. पर शायद किसी और के लिए ना ये सिर्फ एक ड्रॉ है, लेकिन हम सब जानते हैं ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज दैट ड्रीम्स टू कम ट्रू व्हेन अ नेशन कीप्स बिलीविंग. एंड यार मुझे लगता है कि ये पॉइंट सिर्फ फुटबॉल का पॉइंट नहीं है, ये है सालों की मेहनत का, एकेडमीज का, यंग फुटबॉलर्स के सपनों का एंड उन फैंस का पॉइंट है जो हर हाल में अल अनावी के साथ खड़े हैं, यानी कि आप और हम. लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है, ग्रुप बी अभी भी पूरी तरह से ओपन है, मतलब क्वालिफिकेशन की रेस जिंदा है, उम्मीद जिंदा है एंड सपने भी अभी पूरी तरह से जिंदा है. एंड अब नजरें होंगी 18th of June पर जब कतर सामना करेगा कोहोस यानी कि कनाडा का. एंड यकीन मानिए इस मैच में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेली जाएगी भाई, दिल भी खेलेंगे, जज्बा भी खेलेगा एंड पूरा कतर जो है ना हम सब आप और हम मिलकर खेलेंगे. बिकॉज यार ये जो हिस्ट्री का मोमेंट है ना ये सिर्फ एक ट्रॉफी से नहीं, कई दफा ना एक बिलीफ से शुरू होता है. सो गो कतर, हम जो है तुम्हारे साथ पूरी तरह से तैयार हैं इस मैच को खेलने के लिए. अलनावी पूरे देश के साथ हर एक शख्स जो है ना तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहा है. गो एंड रॉक इट. दिलजीत दोसांझ की आवाज. चलिए जी अभी से सेलिब्रेशन मोड जो है पूरी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: ओए ओए ओए ओए, अब बताएं तो क्या ही बताएं। हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। देखिए यार, एक ही वर्ड को ना अपने अपने इमोशंस और पूरे सिनेरियो के हिसाब से कई तरह से कहा जाता है। अब जैसे मैं ओए ओए की बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को छेड़ना है तो आप कहेंगे ओए ओए क्या बात है, काफ़ी सारी चीज़ें की हमने ऐसी। अगर आप परेशानी में तो आप कहेंगे ओए ओए सच। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ओए ओए क्या ही बात है। लेकिन इस वक्त सच कहूँ, जब जब ये मौसम को देख रही हूँ, सूरज चाचू से मेरी मुलाकात हो रही है, तो दिल में एक ही ख्याल आ रहा है, ओए आखिर ऐसा क्यों ही होए। एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट। वेल, इस वक्त अगर कतर के मौसम को देखने की कोशिश करें, भाई साहब इसने हमारी जिंदगी में कोहराम मचाने में कहीं कोई कमी ना छोड़ी है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त आप न जाने किस पे तपे हुए हैं, जिसकी आग हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, बस हम ये ना जानते। फाइनली आंकड़ा जो है 50 तक पहुंच चुका है, मतलब तुम्हारी उम्र की मुलाकात जो है फाइनली इस मौसम से हो चुकी है। यार भले ही मैं वेदर अपडेट देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखा है 47-48, लेकिन फीलिंग जो है ना 50 से ऊपर वाली होने लगी है। यार सच कहना चाह रही हूं, अपने आप को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखें, बहुत पानी पिए, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, एंड कुछ टाइम के लिए कैफीन से थोड़ी दूरी बना कर रखें। क्योंकि कहते हैं ना कहीं बॉडी में ऊपर नीचे बहुत कुछ करने का काम जो ये करते हैं, तो जितना हो सके ख्याल रखें, एयर कंडीशन में रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो ना कि आप सडनली गर्मी से निकल रहे हैं, तो इंस्टेंटली अपनी गाड़ी में, उबलती हुई गाड़ी में तुरंत ना बैठें। भाई गाड़ी को थोड़ा सा पहले से ऑन कर दो, एसी को ज़रा देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद ही अपनी गाड़ी के अंदर जाओ। क्योंकि बाहर की गर्मी तो आप एक बार फिर सहन कर लोगे, लेकिन गाड़ी में घुसने के बाद अगर वो एक मिनट की भी जो हीट होती है ना, वो सफोकेशन करने में कहीं कोई कमी ना छोड़ती। स्टे हाइड्रेटेड एंड कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए ही काम करना है। टिक्के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। एंड वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: वेदर चेक, ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vedva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Sunil ji.
2: हाँ जी.
3: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ. सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया.
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना अपने को ज्यादा.
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
3: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
2: पेट्रोल फालतू का.
3: अच्छा.
2: पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
4: सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
5: मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है.
6: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है. मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने.
5: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी. Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन June 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाडना मिल्क लबान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का घोलते हुए कुछ तो नया है जिसे शुरू करने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ. यार हर बार एक नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता यार, कभी कभी जो है ना ये हमारी जिंदगी में सोच भी बदलता है. एंड अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोई मौका ढूंढ रहे थे या तलाश कर रहे थे कि आपको कुछ नया करना है, लेकिन हाँ कोई तो नया दिन हो, कोई तो नया साल हो, तो ऐसा मौका एक बार आपकी लाइफ में फिर से आ चुका है. वेल, कतर कैलेंडर हाउस के हिसाब से 16th of June को मुहर्रम का पहला दिन और इस्लामिक न्यू ईयर का एक नया पॉसिबल पूरा का पूरा सिनेरियो जो है हमारी जिंदगी में क्रिएट होगा. अगर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की बात करें तो मुहर्रम का चांद जो है 15th of June की सुबह 5:55 पर आपको देखने को मिलेगा और सनसेट के बाद लगभग 40 मिनट्स तक ये नजर आएगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ये हमारी जिंदगी में कोई तो छोटा सा मौका है कि हम किसी बात को रिवाइंड करें, नए रेजोल्यूशंस फिर से लें, लेकिन इस बार ठाने के भैया कुछ भी हो जाए इस बार से तोड़ेंगे नहीं बल्कि पूरी तरह से कायम रखेंगे. तो वेल, एक बार फिर से आप सभी को मुहर्रम मुबारक इन एडवांस. एंड जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही दुआ है कि अल्लाह की रहमत जो है और बरकत जो है आप पर हमेशा बनी रहे. कीप लिसनिंग टू मिर्ची, इट इज हॉट. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Mitchie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: भाई साहब आप पुकारे तो जरूर आएंगे, हम आपकी गली 101% आएंगे। भाई तनु विद मनु से ये पावर पैक गाना था उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन उस वक्त कोई गली आपने जाने ना जाना, लेकिन हाँ इस गली का जरा ठौर ठिकाना पता कर ही लेना।
1: मिर्ची अंशु
0: आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। देखो बात इतनी है कि जब पैसे का रंग काफी कमाल हो तो इतना ही काम करना कि जहाँ जहाँ उसके रंग बिखरते चले आप जो है उस गली पहुँच ही जाना। तो अगर आपको लगता है कि आप नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, तो भैया बांग्लादेश से भी अगर आप आते हैं तो अच्छे वाले एक्सचेंज रेट्स के रंग जो है ना आ चुके हैं, तो उस गली जाने की तैयारी कर लें। Well, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आईपी मनी में आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.09, पाकिस्तानी रुपीस 76.73, साथ ही नेपाली रुपीस 41.73, बांग्लादेशी टाका 33.76 एंड लंगन रुपीस 92.09। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तू मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा सुनो, क्या तुमने भी वो वायरल फोटो देखी?
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे बस वही फोटो जो उस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से ट्रेंडिंग है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त अगर दुनिया से किसी शोर की बात करें तो वो सीधा आती है यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। जहाँ पे हर जगह इसका क्रेज है, वहीं हमारे कोई तो लोग हैं जो वहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया। यार, हजारों फुटबॉल फैंस के बीच एक ग्रुप ऐसा था जो सबका अटेंशन खींच रहा था ना। उनके हाथ में कोई ट्रॉफी नहीं थी, ना ही कोई सेलिब्रिटी उनके साथ, लेकिन फिर भी लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटोज ले रहे थे। क्यों? बिकॉज दे वर प्राउडली वेयरिंग द ट्रेडिशनल कतरी अटायर। एंड यार, जब मैंने ये तस्वीर देखी ना, तो मुझे लगा क्या बात है। आज के जमाने में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जब हर शहर और हर मॉल लगभग एक जैसा दिखने लगा है, तब अपनी पहचान को संभाल कर रखना, हर जगह लेकर जाना, ये कितनी बड़ी बात है। जरा सोचिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आप अपने रूट्स को साथ लेकर चलते हैं ना, तो आप सिर्फ एक इंसान या फॉलोअर नहीं रह जाते, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर बन जाते हैं। और यही तस्वीर हमें कतरी यूथ ने दिखाई। दे वरंट जस्ट सपोर्टिंग अ फुटबॉल टीम, वेल दे वर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन एंड दे वर टेलिंग द वर्ल्ड दिस इज हु वी आर, दिस इज आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। यार, ये पूरा का पूरा नज़ारा देखने के बाद ना, दिल जो है खुशी से गदगद हो उठा। बोले इतना ही कहना चाहूंगी, कतर के इन यंग सपोर्टर्स को सलाम जो फुटबॉल देखने गए, लेकिन साथ ही दुनिया को एक खूबसूरत लेसन भी दे आए कि भाई मॉडर्न बनो, ग्लोबल बनो, लेकिन अपनी पहचान को कभी मत भूलो। एंड शायद हमें भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: और नानी का घर हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये बात हमने कभी बचपन में सोची नहीं ना कि जो हम इतनी सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। नानी का घर हमेशा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ना नानी होती है और ना वो घर घर जैसा लगता है, फिर वहां जाने का मन भी नहीं करता है। दुनिया कितनी बदल जाती है ना यार। और आप बोलोगे सारा ऑल ऑफ अ सडन ये क्या इतनी इमोशनल बातें कर रही हो तुम। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मैं कैफेटेरिया में बैठी हुई थी एंड मेरे बाजू वाली जो टेबल थी वहां पर एक नानी और नवासी की जोड़ी आके बैठी और उनका कॉन्वर्सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड सिंस वो लोग अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे तो ऑफकोर्स वो बातें मुझे भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो तो मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे ना। तभी नानी जो थी वो अपनी नवासी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम कुछ लेने की बात करो, किसी चीज पर राजी हो तो मैं तुम्हें दिलाऊं भी। तुम हो कि किसी चीज के लिए हाँ ही नहीं बोलती हो। और जो नवासी थी ना वो बिल्कुल चिल सीन जेंजी नवासी, शी वाज लाइक नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम देर आई रियलाइज कि हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में कितना फर्क हो गया यार। मतलब हमें अगर कुछ दिया जाता था वो भी बिना पूछे तो हम नाना करते हुए हाँ कर लिया करते थे यार, क्योंकि उस ना में हाँ ही होती थी। एंड आज आई डोंट रिपेंट दैट बिकॉज ऑफ द रीजन यार, ये जो सारे मौके हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये हमेशा नहीं रहती। हमें तब ऑफकोर्स नहीं पता था कि नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आज जो हमने लम्हे जी लिए अपनी नानी के घर में, उन्हें जीने के बाद तो लगता है कि जो किया अच्छा किया। कितनी सारी यादें हैं नानी के घर की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए नानी के घर की यादों को ताजा किया जाए। तो चलो जी, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90s के गियर में डाल चुकी है और मैं आपसे कह रही हूँ, यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na pierdwa la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: हेलो नवनीत
1: या
2: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप कुमार।
2: उनसे मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तो मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसी अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
1: कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज अगर मुझे कोई चॉइस दे और मेरे पास ऑप्शन हो कि यार सारा तुम क्या चूज करोगी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड की वादियों में खो जाना, वहां पर ट्रैवल करना, या फिर अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि तुम बचपन के टाइम में नानी का घर विजिट कर पाओ, तो तुम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगी? एंड ऑफ कोर्स आप मेरा आंसर जानते हो।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और नानी का घर वो घर हुआ करता था जो कि हमारे घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वहां पर वो सब कुछ था जो हमारे घर में नहीं था, एंड दैट इज नानी का प्यार, ननिहाल का दुलार, जो आज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बड़े होने का मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है कि वो लाड प्यार दुलार जो है वो कहीं चला गया। नाउ हमने अपनी सीट्स बदल ली हैं और हम वो जगह पर आ गए हैं जहां पर हम ननिहाल का प्यार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय हमारे दिन कहाँ चले गए यार। लेकिन नानी के घर में मुझे वो टाइम याद है जब खाना खाना नेवर यूज टू बी अ टफ जॉब, ना हमारे लिए और ना ही हमारे पेरेंट्स के लिए। हमें खाना खिलाना बहुत बड़ी जॉब हुआ करती थी यार। मतलब आज के टाइम पे व्हेन आई सी माय नीसेस एंड नेफ्यूज, उनको खाना खिलाना कितना बड़ा काम हो जाता है। एक दो घंटा तो लग ही जाता है यार, वो भी टीवी और मोबाइल के जरिए उनको खाना खिलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन लोगों ने खाना खाना सीखा है। हमारे साथ कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ करता था यार। हम तो सारे के सारे कजन एक पंगत में बैठ जाया करते थे, दस्तरखान लगता था, उसके ऊपर खाना लगता था और सारे के सारे साथ में बैठ के एक दूसरे को देखकर खा लिया करते थे। कभी नहीं सोचते थे और क्वेश्चन करते थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। जो सब खा रहे वही हम खा रहे होते थे। इनफैक्ट जो खा रहे होते थे उसमें हम कॉम्पिटिशन भी लगा रहे होते थे कि कौन सबसे ज्यादा रोटियां खा पाता है, कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खा पाता है, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भुज्जे खाता है कड़ी में। और कभी कभी तो हम इस चीज की भी कंपटीशन लगा लिया करते थे कि लेट्स सी कौन कितने ज्यादा ग्लास पानी पी लेता है। इसी कंपटीशन को जीत जीत कर या फिर उसमें कभी हार हार के हम पल बढ़ गए। कभी खाना हमारे लिए टफ जॉब हुआ ही नहीं, एंड आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन कि आई एम अ बिग फूडी। नाउ आई लाइक एवरीथिंग, कुछ भी खिला दो मैं शौक से खा लूंगी, उसके अंदर स्वाद और प्यार भरा हुआ होना चाहिए। नानी के घर की कुछ बात ही अलग थी और वही बात आज मिडडे मोहब्बत पर हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारे घरों में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम इस तरीके के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को, लेकिन नानी के घर का आर्किटेक्चर वॉज वेरी डिफरेंट।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज इस पिटारे में से नानी का घर निकल के आया है, जो कि हम सबके दिल के अजीज चीज है। एंड नानी के घर में ना कमरों के नाम हुआ करते थे, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इतने पॉश नेम नहीं हुआ करते थे। नानी के घर में कमरों के नाम हुआ करते थे, जहाँ टीवी रखा है वो टीवी वाला कमरा, जहाँ फ्रिज रखा है वो फ्रिज वाला कमरा, जहाँ अनाज रखा है वो गेहूं वाला कमरा, और जहाँ बिस्तर रखे हैं वो बिस्तर वाला कमरा। इन सभी कमरों में खेल कूद कर हम पले बड़े हैं, और बड़े होने के बाद जब नानी के घर में अब जाते हैं ना, तो आज भी हम उन कमरों को उसी नाम से बुलाते हैं, भले ही आज उनके नाम अलग हो गए हो। कि ये चिंटू का कमरा है, वो बिट्टू का कमरा है, या ये ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम है, ना जी, हमारे लिए तो आज भी वो टीवी वाला, फ्रिज वाला, अनाज वाला कमरा है। आज उसका नाम बदलने का हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं बचपन की। जो नानी तो चली गई, लेकिन उनके घर से ये यादें इन नामों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
3: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
2: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी अजीब बात है यार, बचपन में जिस कार्टून कैरेक्टर को देख देख कर बड़े हुए उसको उस जमाने में तो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ही समझा करते थे, और हाँ पसंद भी बहुत आया करता था, इम्प्रेसिव बहुत था। लेकिन आज उसी कार्टून कैरेक्टर को जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है कि हाय काश कि मैं यही कार्टून होती लाइफ में।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sarah, aapki 90s ki yaadon ka pitara, and the cartoon character that I'm talking about is Richie Rich. Yaad hai aapko? Yaar, bachpan mein jab is character ko dekha karte the na, to impressed to main hoti thi ye dekhkar ki haaye kya life hai yaar, kya ghar hai, kya gaadiyan hain, futuristic gaadiyan hoti thi bande ke paas, kya kya gadgets hua karte the, kya bangla tha uska. लेकिन हमें तब भी ना सबसे अच्छी बात रिची रिच की लगती थी कि ये हमेशा सही का साथ देता है। एक अमीर लड़का होकर भी ना उसमें एक मासूम बच्चा छुपा है जो दोस्ती और इंसानियत में यकीन रखता है। आज मुझे उस रिची रिच के अंदर पता है क्या नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि यार क्या मस्त लाइफ है यार इसकी, क्या करना है इसको, अच्छा ही तो होना है ना सबके साथ। दैट्स सो सिंपल, मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं भी इतनी अच्छी हो जाऊँ सबके साथ। Which is not really easy जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो, because लालच भी तो बुरी बला होती है और तभी ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है। But nevertheless मेरे को तो यही लग रहा होता है कि यार काश काश की लाइफ में और कुछ ना करना होता और सिर्फ रिची रिच का रोल प्ले करना होता तो मैं तो तैयार थी फौरन से ये काम करने के लिए। आप बताओ, आपको रिची रिच इसी वजह से आज ज्यादा पसंद आता है या बचपन में ज्यादा पसंद आया करता था? DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे यहाँ.
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते.
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा.
1: मैम वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार हम सब ने ये तो एक जमाने में पूछा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन हमने ये कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि यार गजनी मूवी के अंदर कल्पना संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी जाने बगैर ही मर गई। भाई ये हमारे लिए एज एन ऑडियंस तो बहुत ही दर्दनाक बात थी, और इस बात के पीछे जो वजह थी वो आज जाके पता लगी है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के डायरेक्टर AR मुर्गा दोस्त ने बताया कि यार इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक्चुअली जब उन्होंने ये अपने आप से सवाल किया कि व्हाट इफ अगर कल्पना को संजय सिंघानिया की असलियत पता लग जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इवेंचुअली ही अराइव टू द कंक्लूजन कि यार अगर उन्होंने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशन कर दिया ना कि हाँ कल्पना को संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान के बारे में असीन को सब कुछ पता लग जाता है तो यार मजा चला जाएगा इस फिल्म के अंदर से। मजा तो वही था जहाँ कल्पना को ये बात नहीं पता थी कि संजय सिंघानिया आखिर हकीकत में है कौन, और कल्पना का वो जो जेस्चर था ना कि वो इतनी मासूमियत से संजय सिंघानिया जो इतना मिलियनर और मल्टी मिलियनर इंसान है उसको उसके पैसे भी लौटा रही है, इतनी सच्चाई से उसके साथ बिहेव कर रही है और बहुत ही बेसिक बातों को लेकर खुश हो रही है, वही वो सारी चीजें थी जो संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर जो था उसको पसंद आई थी अबाउट कल्पना यानी कि असीम, और यही वो सारी बातें थी जो इस कैरेक्टर को लेटर ऑन याद रही आफ्टर ही फॉरगॉट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज नेम हिज फेम हिज मनी हिज हाउस ही फॉरगॉट एवरीथिंग बट जस्ट दैट गर्ल, और ये वही फील था वही इमोशन था जिसको वो टैप करना चाह रहे थे। लेकिन अगर कल्पना को संजय सिंघानिया के बारे में पता लग जाता तो ये इमोशन इतना अग्रेसिवली निकल के नहीं आता क्योंकि वही चीज बार बार आमिर खान के कैरेक्टर को हिट कर रही थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि उन्होंने इस चीज को वहीं छोड़ दिया। इनफैक्ट द रीजन कि आज आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने सही किया कि संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी कल्पना से हमेशा के लिए छुपाई ही रखी, वरना हम भी कहाँ इस बात के बारे में बात कर रहे होते। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: victory wishes team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: तब वो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसका एक ऐसा गाना था जिसे कि हमें बचपन में सारे बड़े टोका करते थे गाने के लिए कि नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है जो इस गाने में कही गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस गाने में क्या कहा गया था यार, बस यही तो कहा गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है आज के टाइम पर, ये तो हमारे बड़ों का मुद्दा हुआ करता था। मुद्दा तो ये है कि ये जो कहा गया है, ये गाया गया है, जो म्यूजिक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है बॉस, क्योंकि ये तो कॉपी की गई है फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड जिसका नाम था द चैम्प्स, और उनका 1958 में रिलीज हुआ ये गाना टकीला इज एक्चुअली द ओरिजिनल म्यूजिक, जहां से इस गाने की इंस्पिरेशन या कॉपी, व्हाटएवर वी वांट टू से एंड व्हाटएवर वी फील अबाउट इट, की गई है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है ना कि 90s की कोई फिल्म है या कोई गाना है जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया, तो फॉरन डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मैं ना आपसे अपने बचपन की एक बात शेयर करती हूँ। बचपन में माई फादर यूज टू टेल मी अबाउट अ फेरी गॉड मदर हु ऑफ कोर्स डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन गुड ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि जब मुझे ये पता था कि आई हैव अ फेरी गॉड मदर, आई यूज टू फील वेरी सिक्योर, वेरी प्रोटेक्टेड। और मेरे डैडी वो रात में ना मुझे फेरी गॉड मदर के नाम पर दूध पिला दिया करते थे, सोने से पहले चेंज करके ब्रश करके सोने की आदत दिला दिया करते थे, और अक्सर सुबह मुझे मेरे तकिए के नीचे कभी गिफ्ट्स तो कभी चॉकलेट्स मिला करती थी। थैंक्स टू फेरी गॉड मदर, यू नो आई स्टिल वुड वांट टू बिलीव इन अ फेरी गॉड मदर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए ना, हेंस इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं ना, सही कहते हैं। लेकिन आज भी ना इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर ना हम भी खुश रह सकते हैं, जहाँ जरूरी नहीं कि हर बात को सीरियसली लिया जाए और हर चीज का पर्दा फाश किया जाए। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, और ये गाना भी वही कहता है कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿਆ ਵਾ ਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ
1: ਓਕੇ
0: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ
1: ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਜੋਬ ਕਰੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ
0: ਮੈਨੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਮ ਕੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ
2: ਚੁੱਪ ਕਰ 2 ਸਾਲ ਕਾਮ ਕੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ
0: सॉरी सर
1: कैरी ऑन रखिए आप बताइए मुझे अपने बारे में ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ हाँ बताइए भड़कता हुआ कस्टमर आता है कॉल करता है तो उसको किस तरह हैंडल करते थे
0: कस्टमर्स आए जब मैंने आपको बताया ना मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड
2: बकवास बनकर कूलली तू करता था कूलली दांत अंदर कर
0: हम करते थे सेटिस्फाइड
2: कर बकवास बनकर
0: जैसे आप बोल रहे हो ना ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग
1: अच्छा इससे ज्यादा दिखाते हैं अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए
0: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने
2: शराब अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा अब ये असलियत कह रहा हूँ तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार
0: अभी तक
2: पेशेंट चेक कर रहे लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में जॉब करूंगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार इंसान बना नहीं है
0: खुद को देखा आपने कभी
1: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम्हारा मुर्गा बना रहा था और लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड तुम्हें जॉब मैं दूंगा तुम मेरे शो में आके बैठो मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV ke antenna.
2: यादों को चिट्ठी।
1: हालांकि आजकल हमारे घरों के अंदर स्मार्ट टीवीज, वाईफाई, सेट टॉप बॉक्सेस इन सब की भरमार है, लेकिन फिर भी इन सारी सहूलियतों की भीड़ में तुम्हारी याद कहीं ना कहीं से निकलकर आ ही जाती है। रियलाइज होता है कि आज जो इतने आसानी से बैठ के हम टीवी देख रहे होते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक जमाने में हम परेशान हो जाया करते थे अगर गलती से कुछ चंद बूंदे भी पड़ जाया करती थी या हवा तेज हो जाया करती थी। दिल में एक ही डर होता था कि ओ नो, अभी तो वो पिक्चर शुरू होने वाली है जिसका कि हमने पूरे हफ्ते इंतजार किया है, वो डीडी वन पर आएगी, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही आंधी तूफान के आसार कैसे आ गए, अब एंटीना हिलेगा, सिग्नल डुलेगा और हमारे प्लान पे रायता ढुलेगा। और जब बारिश आया करती थी ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर पन्नी चढ़ा दिया करते थे। आई डोंट नो इफ इट एवर मेड सेंस और नॉट, बट हाँ, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा हुआ करता था गालिब। कभी तुम टी शेप में आते थे तो कहीं तुम गोल वाले शेप में आते थे, और इनफैक्ट जब तुम गोल वाले शेप में आए तो मुझे लगा ओहो, ये तो कुछ प्रीमियम टाइप का है जो हमारे यहाँ पे लगा है, क्योंकि सबके यहाँ तो टी शेप में है, हमारे यहाँ गोल वाले शेप में है। अक्सर ऐसा भी हुआ करता था कि छतों की सफाइयाँ होती थी तो पुराने एंटीने जो टूटे फूटे या तो उड़ के कहीं और से आए होते थे या हमारे ही घर के जो

0: भी टूट गए होते थे और रिप्लेस हो चुके होते थे नए वालों से, वो छतों की गंदगी के अंदर निकल निकल के आया करते थे।
1: तुम भी क्या कमाल की चीज थे यार, बस एक बार छत पर टंग जाया करते थे तो ना जाने क्या क्या कैच करके हमारे टीवी पर दिखा दिया करते थे।
0: तुम्हारी टेक्नोलॉजी मैं आज तक तो नहीं समझी थी,
1: मगर हाँ हमने तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इंसान के साथ बड़ा इस्तेमाल किया है। नीचे से एक जना आवाज दिया करता था कि हाँ हाँ हाँ आया आया आया, नहीं नहीं नहीं रुक रुक रुक, और ऊपर बैठा एक इंसान ये मैसेज लिया करता था जो कि तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा होता था कि किस तरफ तुम्हें घुमाए, किस दिशा में तुम्हें लाए कि हमारा जो नेटवर्क है टीवी का वो आ जाए किसी तरीके से। थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं और फिर फाइनली एकदम बढ़िया होकर स्क्रीन हो जाती थी हमारी एकदम ढाई। तुम्हारे सहारे हमने महाभारत, शक्तिमान, चित्रहार, फ्राइडे की फिल्में, सैटरडे की फिल्में, ये सब बिना हिले डुले देखी हैं। आज जब एक रिमोट से सैकड़ों चैनल्स बदल जाते हैं ना, तब तुम्हारी वो सादगी और तुम्हारा वो चैलेंज बड़ा याद आता है। तुम्हारे बिना तो टीवी देखना अधूरा सा लगता था। अब तो ना छत पर वो दौड़ भाग रह गई है और ना ही वो पिक्चर आ गई की खुशी रह गई है। वो एक्साइटमेंट ही अलग हुआ करता था यार, जब एक पिक्चर देखने के लिए इतनी मेहनत और हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता था। आज तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है और शायद इसी वजह से आज उसकी इतनी अहमियत भी नहीं है। तुम सिर्फ हमें टीवी नहीं दिखाया करते थे और ना ही सिर्फ हमारे नेटवर्क और सिग्नल्स को टीवी से जोड़कर रखते थे, तुम तो हमारी पूरी फैमिली को जोड़े रखते थे। और सिर्फ फैमिली ही क्यों, पड़ोसियों को भी हमसे जोड़े रखते थे जो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए आया करते थे। तुम्हें याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन,
7: इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में यस बॉस से ये जो गाना है ना, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हम सभी की लाइफ का सच है बॉस। कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे। भले कहावत है, कहते हैं कि लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट सर्चिंग फॉर इट, यानी कि आपको जब लग रहा होता है ना कि यार अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मतलब प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना यार, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, ठीक उसी वक्त आपको प्यार ढूंढ ही लेता है। आप नहीं ढूंढते हो, प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है, खुद चल के आपके पास आ जाता है। और यही इस गाने का भी फील है, जहाँ पर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे, हमको मिल जाएंगे। भले कहावत है, कहते हैं कि लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट सर्चिंग फॉर इट, यानी कि आपको जब लग रहा होता है ना कि यार अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मतलब प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना यार, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, ठीक उसी वक्त आपको प्यार ढूंढ ही लेता है। आप नहीं ढूंढते हो, प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है, खुद चल के आपके पास आ जाता है। और यही इस गाने का भी फील है, जहाँ पर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे, भूल फरमाए और इस गाने पर जाए, यानी कि ये गाना अब आपके लिए मैं लगाते हुए जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हमें राय प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा।
1: इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।

हेलो मिर्ची हेल्पलाइन। हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।

0: बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इस सारे अवार्ड्स के लिए पहले जोरदार ताली उन सारे मैनेजमेंट को जो इससे जुड़े हुए। यार मतलब इंसान से एक कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा, ये एक तरह से आर्ट म्यूजियम्स हैं, उसके बावजूद ये सस्टेनेबिलिटी के अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आने वाले दौर में भी बहुत कुछ सीखा जाएगा और कतर का एज एन एग्जाम्पल लिया जाएगा। आई एम श्योर सस्टेनेबिलिटी हम अपनी लाइफ में भी ला सकते हैं। कैसे? बड़ा ही कुछ सिंपल काम करना है, घर में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिसको हम रिफ्यूज़ करें या फिर ज़्यादा रीयूज करें और रिसाइकिल चीज़ों के ही बारे में करें, इससे हम अपने सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। 89.6
1: Shyam Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: वो एक कहावत है कि जैसा हो देश वैसा बना ले भैंस। लेकिन कतर इसमें यकीन नहीं करता। कतर कहता है कोई भी हो देश लेकर चलो अपना ही भैंस। और इसी तरह का सीन देखने को मिला है कल कतर वर्सेस स्विट्जरलैंड के मैच में। यू तो मैच एक एक से ड्रॉ हुआ और कतर वर्ल्ड कप फीफा में पहली बार पॉइंट्स टेबल पर अपने लिए पॉइंट्स जुटा पाया और ये ऐतिहासिक दिन था। लेकिन एक और लिहाज से ये ऐतिहासिक हो गया। पूरी दुनिया ने कतर के फुटबॉल फैंस को उनके ट्रेडिशनल अटायर में देखा तो सबने सोचा यार इनकी बातें अलग है। हाँ भाई, सच तो यही है भैया कि लोग सोचते हैं किसी भी मुल्क की पहचान उसकी बड़ी बड़ी इमारतों से होती है, वहां जो बिल्डिंग्स बनी है, वहां जो महंगी कारें चलती है। लेकिन कतर कहता है नहीं भाई, हमें फक्र है अपनी उस नेशनल आइडेंटिटी पर जो हमारे कपड़ों के साथ हमारे साथ आगे बढ़ती है। एंड बता दूं, कल कतरी पवेलियन में जितने भी कतरी फैंस थे उन्होंने पहना था कतर का ट्रेडिशनल अटायर, जैसे कि थोब, एगाल, गतरा, और उसी में वो झूमकर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और यही बताता है कि एक मुल्क की पहचान उसके यहां बनी बड़ी बिल्डिंग से या कार से नहीं होती सर, उसकी असली कल्चर वैल्यूज से, उसके उस ट्रेडिशन से होती है जिसको वो खुद लेकर कैरी करते हैं। और सात समंदर पार भी जा रहे हैं तो अपने कतरी अटायर में ये बता रहा है कि दुनिया में आप चाहे कितना भी मॉडर्नाइज हो जाएं, कितना भी नयापन आ जाए, लेकिन जब आप अपने रूट्स से जुड़े होते हैं ना तो आप वाकई में सबसे खूबसूरत लगते हैं। और कल कतर के उस अटायर में जितने भी कतरी फुटबॉल फैंस थे ना वो इतने अच्छे लग रहे थे कि पूरी दुनिया में ये फोटो वायरल हो गई। और इसीलिए मैं कहता हूं आप कहीं भी चले जाइए लेकिन अगर अपनी रूट से जुड़े हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हैं, तो पूरी दुनिया आपकी उस पहचान को सलाम करती है। और कल कतर की इसी पहचान को मिला सलाम। और जहां अलग अलग टीवी चैनल्स पर भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कतर के ट्रेडिशनल वैल्यूज, यहां का रिच कल्चर हेरिटेज आज पूरी दुनिया देखकर यह मान रही है कि भाई बात तो है हमारे कतर में। और इसीलिए मैं कहता हूं अपने साथ अपने मुल्क की पहचान को जब लेकर चलेंगे ना तो दुनिया सलाम करेगी। कतर के उन सभी फुटबॉल फैंस को दिल से थैंक यू जिन्होंने ये प्राउड मोमेंट हम सबको दिया। मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
2: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
1: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: टाइगर श्रॉफ, ज़ारा खान, एडवर्ड माया की आवाज में ये गाना सुनाया किसने? लेकिन आजकल तो सारे किस्से और कहानी सूरज चाचू सुना रहे हैं, अपनी धूप की जुबानी गजब की गर्मी पढ़ा रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 44 डिग्री सेल्सियस में हमारी गाड़ियां तंदूर ऑलरेडी बन चुकी हैं। यानी कि अब आपको घर से गर्मा गर्म आटा यूं सेकने की जरूरत नहीं है, आप बाहरी तवा बोनट पे गाड़ी के सेक लीजिए, गर्मा गर्म रोटी खाइए लंच ब्रेक में। वैसे 44 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 31 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, एंड राइट नाउ की बात करें एट इवनिंग अराउंड 4:45, 4:46 ये टेम्परेचर अभी भी 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है। वो तो भला हवाओं का जो सुबह शाम थोड़ी गर्म जरूर चलनी है, लेकिन अच्छी फीलिंग दे जाती है क्योंकि पसीने नहीं छूट रहे ना। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं। ये था आज का RSL वेदर अपडेट। मिर्ची इट्स हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी
1: सर, कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
0: ओह माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: देखिए भैया, ये गाना खत्म हो गया चुनरी चुनरी, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि पुराने दौर के ही लोग अच्छे थे। गाना एक सिंगर गाता था और उनके साथ एक लेडी होती थी, जैसे अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने गाना गाया और म्यूजिक डायरेक्टर खुद थे हमारे अनु मलिक साहब, गाना लिखा था समीर साहब ने। लेकिन नए दौर में भैया ऑर्केस्ट्रा हो गया ये गाना, चुनरी चुनरी में आईपी सिंह, जोनीता गांधी, आशीष कौर और न जाने और कौन कौन से सिंगर इसमें घुस गए। मतलब अपने आप में ऑर्केस्ट्रा बैंड आ गया है। यस, हम आपको बता दें सुधीर, अनुराधा ये सब इसमें आ गए हैं, लेकिन जो गाने के बेचारे पुराने असली सिंगर थे वही इससे दूर हो गए, अभिजीत साहब। पर मैं एक चीज बता दूं, ये हमको हो सकता है पिक्चर के कम बजट की जैसे होता हो, जहां पर वो साफ कहते होंगे लिरिसिस्ट लेना नहीं पड़ेगा और गाने का म्यूजिक ऑलरेडी डन है, तो तुम लोग बस अपनी थोड़ी थोड़ी आवाज डाल दो और इस म्यूजिक में हम रिमिक्स डाल देंगे, डीजे मिक्सिंग, बस काम हो जाएगा। खैर चलो, हमसे क्या मतलब रखते हैं, शाम के 5:05 पर हम तो आपके साथ मिलकर इस घंटे खेलते हैं वो जिसका नाम है और पहचान कौन में एक आवाज जो सुनेंगे आप और बताएंगे किसकी आवाज है ये।
2: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था।
1: मेरी ये बात सुनिए, किसकी आवाज है ये और यही है आज का हिंट।
2: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था।
1: किस की आवाज है ये आपको बताना है 5000 1896 पर। मसमौला गौरव को वॉइस नोट में अपना जवाब देना है, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करनी है कि हाय गौरव, हम ये बोल रहे हैं, हमको लग रहा है ये आवाज इनकी है। चलिए कोशिश कीजिए, अगर आपने पहचान ली तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं मान जाऊंगा कि आप इनके सबसे बड़े वाले फैन है। याद रखिए ये आज का हिंट है, किस की आवाज है ये।
2: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था।
1: 5000 1896 पर किस की आवाज है ये। अब हम आगे बताएंगे कि हमने ये जो हिंट दिया है ये कैसे दिया है। फिलहाल वेदांग रैना और नीलांजना घोष मिलकर मस्कारा लगाने आ गए मिर्ची पर। इट्स हॉट, जल्दी जवाब भेजो, इंतजार कर रहे हैं हम।

0: 89.6 पर जीवन भर मस्त और गौरव आपके साथ है। खेल रहे हमारे साथ आप वो जिसे कहते हैं
1: पहचान कौन
0: में एक आवाज आती है, आपको पहचाननी होती है आज की आवाज किसकी है। अब मैंने ये कहा कि ये आवाज आज किसकी है और इनको प्यार से लोग सीरियल किसर बोलते हैं।
2: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था।
0: किसकी आवाज है ये और बॉलीवुड में बहुत नाम है इनका। 5000 1896 पर मस्मौला गौरव इंतजार कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके आप वॉइस नोट में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर भेजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। पुष्पा आ गया, झुकेगा नहीं, सुनाएगा गाना पूरा मिर्ची सॉन्ग।
3: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: किस झुकेगा नहीं साला।
1: तो है अगर आप पुष्पा बॉलीवुड के लिए तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए।
2: मस्त मौला गौरव 5000186
1: पर आप बताइए आज मैंने जो पहचान कौन में आवाज सुनाई है वो किस की आवाज है।
3: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था। मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था।
1: मैं इतना कहूंगा कि आंसर्स आए हैं और ज्यादातर लोगों ने सही बताया, लेकिन मैं मौका सबको दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं और लोग जवाब दें। बहुत ही आसान सी आवाज है और इनको हम सब ने पसंद किया है जब जब आए हैं फिल्म में। किसकी आवाज बड़ी जोर से आई?
3: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था। मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया।
1: मैंने ये पूछा ये किसकी आवाज है और वाकई में जिस फिल्म में होते हैं उससे किसकी आवाजें बहुत आती है। 89.6 मिर्ची वन पर 5000186 पर अपना जवाब भेजिए। अब से थोड़ी देर में मैं सही जवाब के साथ मिलूंगा यही मिर्ची पर। शॉर्ट
4: हेलो नवनीत। नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
5: हाय नवेद,
4: क्या हाल चाल है?
5: बढ़िया है।
4: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
5: हाँ, बन गया क्या?
4: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया है यार मुझे?
5: हाँ?
4: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
5: यार मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
4: पापा का नंबर? नाम क्या है यार पापा का?
5: मिस्टर दिलीप।
4: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ मैं भी, हंसता हूँ तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
5: मैं क्या कुछ गलत
4: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार।
5: अब ऐसी बात क्या हो गई?
4: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
5: अब मैं क्या
4: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
5: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
4: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता? यार नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
5: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
4: अरे तो
5: तरफ से मैं माफी
4: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
5: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है SMS कर दो, मैंने कर दिया।
4: तो मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
5: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
4: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लूं। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
5: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
4: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं हुई। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
4: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
5: कुकड़ुकु।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: गाना खत्म हुआ विशाल मिश्रा सचिन जिगर की आवाज में तुम जो मिले हो, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम जो फंसे हो। मेरे साथ इस घंटे चलता है और मैं इसमें एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ बताइए किस एक्टर या एक्ट्रेस की आवाज है। और आज की आवाज ये थी,
1: मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन इस वक्त जब ये चीज वायरल हो गई थी मुझे पता नहीं था। मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉल आया था,
0: इनकी कोई चीज वायरल हुई नेटफ्लिक्स से कॉल आया तब जाकर इन्होंने समझा। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत चलाक है हमारे अपने जो मिर्ची लिसनर्स, मेरा परिवार जो शाम शानदार में रहता है, सब मुझसे पूछ रहे हैं ये है क्या, मतलब रिकॉर्ड करके नहीं। एक भाई साहब ने लिखा है राजकुमार राव, इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सुमन जी को जिन्होंने सही जवाब दिया, इसके अलावा शांतनु भाई ने लिखा है इसी राजकुमार, सुफियान भाई लिख रहे हैं कि ये तो वरुण धवन की आवाज है, फैजल ने लिखा है वरुण धवन, मतलब वरुण धवन और ये एक जैसा साउंड करते हैं क्या, नहीं नहीं ये आवाज किसकी है, ये हमारे मिर्ची लिसनर्स के कुछ लोगों ने तो जरूर बताए हैं।
2: हे मस्त मौला गौरव, दिस इज योगेश, द वॉइस इज लुक्स लाइक इमरान हाशमी।
0: ओके,
3: हाय गौरव, दिस इज हसन जी, दिस इज द वॉइस ऑफ इरफान हाशमी।
0: इरफान नहीं,
3: इमरान की आवाज, मतलब इरफान हाशमी।
0: नहीं नहीं नहीं, किसकी आवाज, मतलब इमरान हाशमी, इरफान और हाशमी आपने जोड़ दिया, इरफान खान है इमरान हाशमी है। वेल, सही जवाब है आज का, इमरान हाशमी की आवाज है ये। यस, ये दिस इज इमरान हाशमीज वॉइस। उनके लिए मैंने कहा था किसकी आवाज है, मतलब ये जिस भी फिल्म में आते थे उसमें किसिंग सीन हो जाता, सीरियल किसर कहते थे, और इसीलिए मैंने कहा था किसकी आवाज है इमरान हाशमी। मैं तो हमेशा इनके लिए कहता हूँ कि पूरे इंडस्ट्री के हीरो जो हैं वो एक तरफ इमरान हाशमी के फैन फॉलोइंग, एक तरफ भाई दूसरे हीरोज एक्शन सीन करते हैं तो जाकर यू नो अपनी बॉडी में झंडू बाम या कोई भी तेल लगाते हैं, लेकिन इमरान हाशमी अपने लिप पर बाम लगाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं ना। 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑल।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई. मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है.
1: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है. मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने.
0: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी. Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: अच्छे टंडन परंपरा टंडन की आवाज में मलंग सजना गाना सुनाया किसने,
1: मस्त मौला गौरव।
0: और मैं भी मलंग होके आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए दुनिया भर के फुटबॉल फैंस मलंग हैं इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। अगर मैं थर्सडे से एक फ्लैशबैक करूं तो थर्सडे को सबसे पहले मेक्सिको साउथ अफ्रीका का ओपनर मैच, एंड मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया। फिर साउथ कोरिया ने जेक की टीम को 2-1 से, कनाडा बोस्निया का मैच 1-1 पे ड्रॉ रहा, वही यूएसए ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया, कतर स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ, उसके बाद ब्राजील वर्सेस मोरक्को का मैच 1-1 से ये भी ड्रॉ हुआ, एंड हेती स्कॉटलैंड के मैच की बात करें स्कॉटलैंड ने 1-0 से हेती को हराया, वहीं आज ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की की टीम को 2-0 से हरा दिया है। और अब बाकी के मैच जो आज होने, जर्मनी वर्सेस कुराको के मैच जो कि रात 8 बजे शुरू होगा, और रात 11 बजे नीदरलैंड वर्सेज जापान, वेल इंपॉर्टेंट मैचेस, एंड क्या होने वाला है क्या ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर है जीत वही टीम रही है जो मैदान पे अच्छे से खेल रही है। मतलब मेरे साथ क्रिकेट में भी होता था, मैं जिस दिन अच्छा खेलता था उस दिन मेरी टीम जीतती थी, मैं जब खराब खेलता था मेरी टीम हार जाती थी। तो मतलब प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है, सर मैं अच्छा खिलाड़ी था, कभी कभी खराब खेलता था तो खराब हो जाता था, लेकिन एक बात तय है भाई, ये फुटबॉल है, यहाँ एक खिलाड़ी से ग्लोरी से कुछ नहीं होगा, यहाँ 11 के 11 मैदान पर जब डट कर खेलेंगे तभी उनकी टीम की नैया पार होगी। तो आज नीदरलैंड जापान में किसकी नैया पार होगी और जर्मनी कोराको में, इसके लिए इंतजार कीजिए एंड मैदान पर अपने आप को ट्यून कीजिए। फिलहाल सारी अपडेट्स यहाँ मिर्ची पर मिलती रहेंगी।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Let's do that.

89.6 मिर्ची वन पर ज्योति नूरन की आवाज में ये गाना सुनाया किसने भाई? लेकिन फिलहाल मेरी आवाज में एक चीज बहुत अच्छी लागे, वो है हमारे कतर के आईपे के एक्सचेंज रेट। आईपे में अगर एक कतरी रियाल के बदले हम बात करें भारतीय मुद्रा की, बोले तो इंडियन रुपीस की 26.10 INR, यस बोले तो 26.10 भारतीय मुद्रा के मिल जाएंगे। वही वन कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 92.09। अगर इसके बाद हम आए तो पाकिस्तान रुपीस जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.73 पाकिस्तान रुपीज। वही नेपाल रुपीज का तपाई को रेट मिलेगा हजूर एक कतरी रियाल के बदले 41.73 को भल्चर रेट रही, हाँ जी 41.73 का रेट छो। अगर हम नेपाल रुपीज के बाद बढ़े बंधु बांग्लादेशी टका की तरफ दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.76 तो 33.76 बांग्लादेशी टका का रेट। ये था मस्त मोल गौरव के साथ आईपे एक्सचेंज रेट। ऐप डाउनलोड कर लो, जिंदगी बहुत आसान होती है। बहुत सारे और भी एडवांटेज हैं जैसे कि वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। मिर्ची थॉट

0: बैरन गाना बन जा रही की आवाज में हाँ सुनाया किसने? और फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, शाम के 6:03 होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड इन सब के बीच मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक नेशनल मीटिंग करी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को जो वेरियस एंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशन से थे उनको एक साथ लाया और कहीं ना कहीं आई हेल्थ इन द स्टेट ऑफ कतर कैसे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ बड़ा हो और उसे नेशनल प्रायोरिटी के रूप में आगे बढ़ाया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ है। यस, मीटिंग ने करंट स्टेट सिचुएशन को जांचा है कि कतर में जो आंखों की रोशनी है, आंखों की जो तंदुरुस्ती है वो बरकरार है, वो कैसी है, इस पर एक बड़ी मीटिंग ली गई। इस दौरान बहुत सारे अचीवमेंट्स और जो इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किए गए थे उसका क्या रिजल्ट रहा, इस पर बात हुई। एंड कतर आई हेल्थ को इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी मान रहा है। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग डायरेक्टर ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट एट MOPH एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन हमद अल थानी, उन्होंने इस नेशनल एक्शन प्लान फॉर आई हेल्थ एंड ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन के लिए एंड बहुत सारे और आई हेल्थ इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा फ्यूचर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव किस तरह से डेवलप किया जाएगा इसके बारे में बात की। क्वालिटी स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए, आई हेल्थ कतर में लोगों की कैसे अच्छी हो, इस पर एक जबरदस्त इनिशिएटिव आने टाइम में आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं यार, छोटी छोटी चीजों पर भी कतर ध्यान रखता है। हमारी आंखों को किस तरह से तंदुरुस्त रखा जाए ये कतर ने सोच कर रखा है। सोचिए एक मुल्क के रूप में वो हमारी कितनी केयर करता है। थैंक यू MOPH को, थैंक यू यहाँ की हुकूमत को जो हमारे हर चीज पर इतनी बारीकी से ध्यान देते हैं और हमारे हेल्थ कैसे बेहतर बने, आंखें कैसी बेहतर रहें, हम चुस्त तंदुरुस्त रहें, हमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। दिल से सलाम कतर की हुकूमत को। 89.6 मिर्ची 1 पर हमें भी एक काम करना है, जो जो हमें समय समय पर बताया जाता ना वो करनी है, क्योंकि शरारत सिर्फ गाने में ही कीजिए, असल जिंदगी में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। मिर्ची थॉट।

0: Maica.
1: Mirci.
2: Escava la puscabana, sacabana.
3: Rambala.
2: Murga, murga. La virba la murga.
3: Mirci, murga.
4: Hello.
5: से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी.
5: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
4: या
5: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज.
4: बोलिए.
5: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन. हाँ,
4: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg.
5: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
4: Oh my God.
5: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
4: नहीं मैम, प्रॉब्लम.
5: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली.
4: चना दाल, चना कबूली. एरोप्लेन भेजू?
5: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे.
4: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी.
5: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है. स्वीट हार्ट आई लव यू. ऑर्डर दे रही हूँ. तुम आओ तो सही ना. No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
4: Hello.
5: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है. 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना. वही. वही कुछी पुछी कुछी पुछी. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए. 3 प्लेट गोलगप्पे.
4: गोलगप्पे नहीं होते हमारे.
5: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
4: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
5: लंबे वाले
4: नहीं है वो.
5: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
4: क्या खाते हैं
5: मैम? मुर्गा.
4: मैम वो भी नहीं है.
5: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
4: मैम ये हमें नहीं पता.
5: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
4: हाँ जी मैम.
6: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
4: आपकी आवाज में काफी
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: देखिए, क्रिएटिविटी किसी जगह की मोहताज नहीं होती। वो कहीं भी आप क्रिएटिव लोग को पा सकते हैं, मिल सकते हैं, वो जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही कुछ क्रिएटिव लोगों के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है।
1: #974974
0: हम आपको बताना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि Zoom ऐप पर, यानी कि ये जो ऐप है, यहाँ पर अब आपको पीनल एंड करेक्शन इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो इनमेट्स द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि वो लोग जो फिलहाल के लिए जेल में हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये कमाल का इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। यस, पीनल एंड करेक्शन इंस्टीट्यूशंस के इनमेट्स जो हैं, जो कैदी हैं यहां पर, उनके हाथों से बनाए हुए जो भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं वो अब हमें Zoom एप्लीकेशन पर मिलेंगे। SOOM, आप यहां पर जाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो इनके हाथों से बने हैं, यानी कि वो कैदी जो कि भले जेल में है लेकिन जिंदगी में एक और चांस डिजर्व करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अनाउंसमेंट है। पीनल करेक्शन इंस्टीट्यूशन के इनमेट्स जो भी कैदी हैं, उनके हाथों से बनी चीजों को हम अब खरीद पाएंगे Zoom एप्लीकेशन पर। और मुझे लगता है कि यार ये हमारे और आपके लिए सिर्फ एक शॉपिंग का चांस नहीं है, बल्कि ये उन सभी को दूसरा मौका देना है जिनसे लाइफ में कभी ना कभी कुछ गलतियां हुई हैं और फिलहाल अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है उनको जिंदगी में ये बताने का कि दुनिया बाहर की बहुत अच्छी है, जो गलतियां हुई हैं उससे अगर उन्होंने सबक लिया है तो अब हम उन्हें इस तरह से सपोर्ट कर जिंदगी में एक नई राह दिखाएं। 89.6 मिर्ची 1 पर इस इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ साथ पीनल करेक्शन इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उम्मीद है हम Zoom एप्लीकेशन डाउनलोड कर बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

वैसे एज इज जस्ट द नंबर वाली कहावत अब रोहित भैया पे फिट बैठती है। 89.6 मिर्ची वन पर। मैं आपको बता दूं, कल इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले ओडीआई मैच में हराया एंड इसी के साथ रोहित शर्मा के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो शायद ज्यादातर क्रिकेटर अपनी क्रिकेट लाइफ में लेना चाहते। यस, फॉर्मर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा साहब बन गए भारत के सबसे ओल्डेस्ट मैन टू प्ले एन ओडीआई फॉर टीम इंडिया। यानी कि ये सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वन डे मैच खेला एट द एज ऑफ 39 ईयर्स एंड 44 डेज। यस, और इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया मोहिंदर अमरनाथ जी का जिन्होंने भारत के लिए 39 ईयर्स एंड 36 डेज में इन 1989 में एक आखिरी मैच खेला था। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि मोहिंदर अमरनाथ का यह रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है और रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं ओडीआई खेलने वाले। मुझे लगता है जिस हिसाब से रोहित भैया की फॉर्म चल रही है ना, ये अभी भी वापस से टीम इंडिया में डेब्यू कर देना तो 10 साल करियर और चल जाएगा। वैसे जो सपना हम में से ज्यादातर इंडियंस देख रहे हैं वो है 2027 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हम रोहित शर्मा के हाथों में देखें, और अगर रोहित शर्मा ये करने में कामयाब होते हैं तो वो दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो जाएंगे वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करने वाले। वैसे इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान खान जी के नाम था। यस, 1992 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को उन्होंने जिताया था तब उनकी उम्र थी 39 ईयर्स एंड 121 डेज। तो क्या इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास रचेंगे? वेल, हम दुआ तो यही करेंगे, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
2: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
1: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
3: अर्ज किया है
4: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

सोचिए कोई शहर इतना खूबसूरत हो कि हर वक्त वहाँ एक अलग सी मस्ती हो, सिटी ऑफ जॉय नाम ही कह दिया जाए, और वहाँ हर इंसान की बोली में एक मिठास हो, लेकिन अचानक से वहाँ सब कुछ अगर बदल जाए तो यस। और कोलकाता में ऐसे ही कुछ बदल गया है जिसको रोकने के लिए आ रही ऑफिसर ब्राउन। कोलकाता जहाँ पर लोग हमेशा मदमस्त रहते हैं, सिटी ऑफ जॉय नाम ही है, एंड रसगुल्ला से लेकर वहाँ पर मिष्टी दोई का भी बड़ा बोलबाला है। लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, काम में बिजी लेकिन उसके बाद भी मस्ती को ही वैल्यू देते हैं। उस कोलकाता में अचानक से खून की होली जब खेली जाती है तो वहां पर माहौल गड़बड़ हो जाता है, और माहौल गड़बड़ हो जाता है फिर लोगों को लगता है आखिर ये कौन है इसके पीछे जो हमारे शहर को इस तरह से बदल रहा है। और ऐसे में आती है ऑफिसर ब्राउन, और जो लोग ये खून की होली खेल रहे हैं उनको अपनी गिरफ्त मिलेगी। एंड ये आप कहां देख सकते हैं, वन एंड ओनली प्लेस Z5। यस, अगर आपने अभी तक Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहां पर ये ऑफिसर ब्राउन की सीरीज ब्राउन शानदार है, जहां पर करिश्मा कपूर खुद ये रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को पर्दे पर देखना और वहां पर इस क्राइम थ्रिलर को देखकर इसे सॉल्व होते हुए देखना अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस होगा। सो वेटिंग फॉर व्हाट, गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ Z5, जहां पर मस्त मौला गौरव ने आपको याद दिलाया। एंड क्या बता, वीकेंड पे बिंज वॉच करके पूरे मस्ती से ये देखी लो 89.6 मिर्ची 1, मजा आएगा। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: माशू का गाना खत्म हुआ और आपके साथ आ गया वो मस्त इंसान जिसका नाम है
2: मस्त मौला गौरव।
1: और आपके साथ ऐसे ही नहीं आता हूँ, घड़ी का टाइम बताता हूँ, शाम के 7:05 होने को आ गए।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: आ गया नेस्टिंग का सीजन आ गया। यस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कतर के उन समुद्रों की जिसके कोरल रीफ का ध्यान रखते हैं ये टर्टल्स। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने सी टर्टल हैचलिंग रिलीज कर दी है फुवारियत बीच पर।
4: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
1: वेल, हम आपको बता दें हमारे कतर के जो मरीन एनवायरमेंट की बात हम करें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर टर्टल हैचिंग करी जाती है। और यही वो टाइम है जब ये किया जाता है। मोर देन 2 decades का टाइम हो चुका है। 2003 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जब सी टर्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और उस पूरे टाइम से लेकर आज तक ये लगातार हर साल एक मुहिम होती है जहां पर फील्ड मॉनिटरिंग से लेकर नेस्ट प्रोटेक्शन, हैचलिंग फॉलो अप एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस के साथ साथ किस तरह से नेशनल एंटिटीज को एक साथ लाया जाए ताकि कतर का मरीन कंजर्वेशन जो एफर्ट है वो वेन में ना जाए। और इसीलिए लगातार हर साल ये होता है। इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने फुवारियत बीच के पास हैचिंग एंड रिलीज ऑफ जुवेनाइल हॉक्सबिल सी टर्टल्स की है ताकि हमारे कतर का कोरल रीफ हमेशा एकदम अच्छा रहे। और ये समुद्र के मरीन हेल्थ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी टर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और हमारे कतर के मरीन एनवायरनमेंट को बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा रखते हैं। और हमें और आपको भी ये चाहिए कि जब हम समुद्र के पास जाते हैं तो जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो हम बिन्स में ही डालें या फिर अपने साथ घर ले आकर बिन्स में डाल दें। मैंने अक्सर देखा है लोग ये अवेयरनेस तो रखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा इस मामले में लापरवाही करते हैं, लेकिन आप उन्हें समझाने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो वो वेस्ट वहां फेंका है उसको आप ही उठाकर ले आओ, क्योंकि किसी एक की तो जिम्मेदारी बनती है, शायद वो एक आप ही। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, ऐसे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: बोलते हैं.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे हैं, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के 16 श्रृंगार वाली नारी तो तैयार है, आप ग्रैंड फिनाले की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, आईपीएल मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 की टॉप 16 फिनाले की फाइनलिस्ट हमारे साथ हैं और ये सारी कंटेस्टेंट बिल्कुल तैयार हैं, हर दिन अपनी तैयारी कर रही हैं। ग्रैंड फिनाले की डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है एंड हम थैंक यू कहना चाहेंगे उन सारे स्पॉन्सर्स को जो हमारे साथ आए और इस मुहिम में हमारा साथ दिया। यस, पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, हाइजीन पार्टनर हाइजीन, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, हमारे फ्रेग्रेंस पार्टनर हैं फरीदी परफ्यूम गैलरी, इसके अलावा हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर है चस्का रेस्टोरेंट, हमारे ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, शुगर फ्री पार्टनर ट्रॉपिकाना स्लिम एंड आईवेयर पार्टनर अल्फा हेड ऑप्टिक्स, साथ ही साथ विजुअल मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, ये सब एक साथ आए हैं ताकि हम मॉम्स को सेलिब्रेट कर सकें और सीजन 5 में टॉप 16 कंटेस्टेंट को हम एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां पर वो अपना हुनर अपना टैलेंट हम सबको दिखाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट, जल्द ही होगी फाइनल डेट की अनाउंसमेंट। कीप लिसनिंग मिर्ची फॉर ऑल द अपडेट्स, इट्स हॉट।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

भा मुलायजा होशियार, लंगड़ा तोता परी हाफूस रत्नागिरी, सारे आम कतर में पधार रहे हैं। अरे बात करें हम सूख वाकिफ में लगने वाले तीसरे हम्बा फेस्टिवल की। यस, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मैंगो फेस्टिवल इज ऑल सेट और ये ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूख वाकिफ में 18 जून से लग जाएगा और 10 दिनों तक रोज शाम 4 से 10 हम दुनिया भर की वैरायटी खरीदते रहेंगे और इंडिया वाले मैंगो का स्वाद यहाँ कतर में लेते रहेंगे। तो भाई जेब में पैसे बचा लो, क्योंकि ये फलों का आम है जो राजा, समझे। इसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है ज्यादा, पर एक बार इसका स्वाद आपके मुंह के अंदर गया तो विश्वास कीजिए प्राइसलेस टेस्ट है ये। मतलब दुनिया में आप किसी भी फल से वो सुख नहीं पाते जो आम से पाते हैं। अब चाहे अमरस बना के पीजिए, मैंगो शेक बना के पीजिए, या फिर इसके अलावा आप आम की कोई भी डिश बना लीजिए, आपको मजा ही आने वाला है। इस उम्मीद में कि हम और आप मुलाकात करेंगे, कहीं तो कहीं टकराएंगे और इस हम्बा फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे जो कि इंडियन एम्बेसी लेकर आ रही है। मस्त मौलक और आपके साथ 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया। इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पावर्ड बाय आईपी, बेस्ट रेट, नो स्ट्रेस, आईपी वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपी, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। लेट्स डू दैट।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Okay then, Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop songs of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry hai, ek re-entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Some special Gaana spotlights, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Gaane ka naam hai Udi Udi by Anish Sarkar. Shruday, it's a nayi naveli entry. Udi Udi ne debut kiya hai on Gaana number 10. उसके बाद मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा. 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा है. पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मिट्टर और की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
2: मर बड़े में जागी दो कणी, ए चंदा में भारी चांदनी, मन दामन में पा ही खुशी रे जम जम जम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी, बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो कोक स्टूडियो ने किया। उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है। That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artist और folk musicians एक साथ मिलते हैं। जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं, दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसी ही collaboration है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे पॉप स्टार, दूसरी तरफ कुटले खां जैसे contemporary राजस्थानी आर्टिस्ट, रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतिल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे? कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi artist recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Har artist, har insaan, main, aap, kisi na kisi dream ko chase kar rahe hain. और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग वे।

0: इस गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, MC Square, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। MC Square की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। MC Square, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है RJ कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

इत जगे सरवाड़े में एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: हार्ड हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका बिडे, विकेट, सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चन को ट्रेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4 बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: Blana, Indie Top 10, Kanika ke saath. On Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Pop music is all about how it makes us feel. Kuch gaane aise hote hain, jo hum sunte hain to nahi nahi hote, par purane bhi nahi lagte. Tabhi hum unhe classics bulate hain. It's time for what we call...
0: Kanika's Gusset Classic.
1: हमारी कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज

0: wanna do is get a little loving good. Let me take you high, then another one. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, let me dig that body.
1: I swear, ये गाना सुनके स्कूल की छुट्टियाँ याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे एंड कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अश्काय और मैं आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं?
2: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

बिल्कुल सही लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी को किसी से कभी भी प्यार हो सकता है भाई। जैसे मुझे हो गया, पिछले हफ्ते मैं सुनील दत्त साहब के बारे में इतना पढ़ रही हूँ, उनकी पुरानी फोटोज देख रही हूँ, मुझको प्यार हो गया उनसे, थोड़ी थोड़ी नरगिस जी से जेलसी भी हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या चार्मिंग, ऑनेस्ट, हम्बल, काइंड, हैंडसम बंदा था यार वो। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ मैन इन माई लाइफ। तो सुनील दत्त का रियल नेम वॉज बलराज, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की तब वेटरन बलराज साहनी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, तो उन्होंने अपना नाम सुनील कर लिया। अब सुनील हो या बलराज, व्हाट्स इन अ नेम, कहा था शेक्सपियर ने। हाँ, गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो, उसकी खुशबू तो वही रहेगी। मैंने ना सुनील दत्त साहब को स्क्रीन पे पहली बार देखा था जब रंगोलिया चित्रहार में ये गाना आ रहा था। फिल्म छाया, सलिल चौधरी का कॉम्पोजिशन, राजेंद्र कृष्ण ने गाना लिखा है, लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सुनील जी।
3: हाँ जी
4: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
3: किस चीज के जी
4: सर? सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
3: यार, बहुत बड़ी।
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
3: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
4: हाँ जी।
3: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
3: कंडीशन वगैरह?
4: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है, आप ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
3: क्या?
4: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
3: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
4: सर पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
4: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
3: धुआं मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
4: अरे अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी मैं। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
3: पेट्रोल फालतू का।
5: अरे सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है।
4: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: झुमका गिरा

पता नहीं मुझे आज तक ये जोक क्यों अच्छा लगता है कि एक बार एक क्लास में एक टीचर बच्चों को बोलती है कि बच्चों आपको पता है बंदर हमारे पूर्वज थे, तो एक बच्चा बोलता है मैम आपके होंगे हमारे तो जमींदार थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के एक जमींदार थे दीवान रघुनाथ जी, उनकी वाइफ कुलवंती देवी और तीन बच्चे। बड़ा बेटा बल्या जब 5 साल का था इन 1934 रघुनाथ जी नहीं रहे तो परिवार को उनके बड़े भाई यानी कि बल्या के ताऊजी ने संभाला। फिर 1948 में जब देश का पार्टीशन हुआ तो रघुनाथ जी के एक दोस्त याकूब ने पूरे परिवार को यमुनानगर के पास एक गांव में सेफली शिफ्ट होने में मदद की। कुछ साल बाद परिवार का बड़ा बेटा जो अब करीब 21 साल का हो गया था पढ़ाई और नौकरी के लिए बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जहां उसने जो सोचा भी नहीं था एक बेहतरीन फिल्म करियर उसका वेट कर रहा था। ये बड़ा बेटा बल्या था बलराज, जिसे आज सारी दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है। लेट दत्त साहब के बारे में बातें हो रही हैं आज पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची

पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुनील दत्त साहब की लाइफ स्टोरी सो इंस्पायरिंग। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनील दत्त जब 5 साल के थे उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर 18 साल की उम्र में देश के पार्टीशन जैसा ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस किया। यमुनानगर के पास एक गांव में जो अब हरियाणा में है, उनकी पूरी फैमिली जब शिफ्ट हुई तो प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सब खो चुके थे। अपनी मदर और 2 छोटे सिबलिंग्स, एक छोटा भाई एक छोटी बहन, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए सुनील दत्त 1950-51 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। जय हिंद कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की और साथ में बस कंडक्टर की जॉब भी। और इसके बाद जो उनको जॉब मिली उससे उनके लिए फिल्मों के द्वार खुल गए। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
4: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरीचा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
3: श्रेयस यू नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स with Charu only on

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: प्यार, या पंजाबी में बोलते हैं निरा इश्क, मतलब सिर्फ इश्क, प्योर इश्क, पक्का इश्क, निरा इश्क था ये बंदा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और बात हो रही है सुनील दत्त साहब की। अर्ली एज में काफी हार्डशिप्स देखने के बाद ये बंदा अर्ली 50s में बॉम्बे पहुंचा, जय हिंद कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई करनी शुरू की, बस कंडक्टर की जॉब भी की, और अब आते हैं उनकी दूसरी जॉब पर। वो कॉलेज में प्लेज भी लिखते थे, एक्ट भी करते थे। ऐसे ही किसी प्ले में उनको एक ब्रिटिश एड एजेंसी ने नोटिस किया, जो तब एक प्रोजेक्ट के लिए एक वॉइस, एक पर्सनालिटी ढूंढ रहे थे जो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू कर सके। ये प्रोजेक्ट था एक रेडियो शो जिसका नाम था लिप्टन की महफिल, ऑन एशिया का ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो दत्त साहब की दूसरी जॉब एक आरजे की जॉब थी, जिसे तब अनाउंसर या रेडियो रिपोर्टर भी कहा जाता था। वाओ, मजा सा आ रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सावन का महीना, पवन

0: レソール。
1: ババヌカレショール。
0: あれババショールね、ソールソールソール。
1: ババヌカレソール。
0: ああ。

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: सर कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
2: ओह माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बच चुके हैं 10 मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स।

द वेरी चार्मिंग सुनील दत्त साहब की बातें हो रही हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर इंडिया के पार्टीशन जैसा ट्रॉमेटिक इवेंट भी एक्सपीरियंस किया। 20-21 साल की उम्र में वो काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई करते करते उन्होंने बस कंडक्टर की जॉब करनी भी शुरू की, और इसके बाद इनकी दूसरी जॉब थी एक आरजे की जॉब फॉर अ शो कॉल्ड लिप्टन की महफिल ऑन एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो बेसिकली उनका काम बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को रिकॉर्ड करना होता था। ये रिकॉर्डिंग वो रेडियो स्टेशन पे भेजते थे और फिर उनका शो ऑन एयर होता था, जो एक्चुअली काफी पॉपुलर था। इस शो पर उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया, इंक्लूडिंग दिलीप कुमार साहब एंड देवानंद। इसी दौरान उनको 2 बीघा जमीन फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने को भी मिला, जहाँ उन्होंने पहली बार देखा अपनी बॉलीवुड क्रश को, नरगिस जी को, जो उस टाइम एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। ये कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल ब्रेक। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते में मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजू?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते हमारे यहाँ।
3: चकोर दे दीजिए, गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं।
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं पता।
3: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

नाम है उनका सुनील दत्त, जिनकी बातें हो रही हैं आज पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। सो अर्ली 50s में कॉलेज में पढ़ाई करते करते सुनील दत्त साहब ने बस कंडक्टर की जॉब की, फिर उनको रेडियो सलोन में एक आरजे की जॉब, एक शो होस्ट करने की जॉब भी मिल गई जहाँ वो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू करते थे। इस शो का नाम था लिप्टन की महफिल। ये शो इतना पॉपुलर हुआ, उनका काम इतना पसंद किया गया कि उनको एक और शो होस्ट करने को दिया गया जिसका नाम था फिल्मी खबरें, जहाँ पे उनको सौरव फिल्मी रिपोर्टर के जैसे काम करना था। तो ऐसे ही वो एक दिन 1953 की शिकस्त मूवी के सेट पे पहुंचे जिसे रमेश सहगल डायरेक्ट कर रहे थे, और दत्त साहब से बात करते करते सहगल साहब ने उनको कहा कि क्या तुम फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो। तो दत्त साहब ने भी मजाक में कहा, जी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मुझे हीरो लिया जाएगा। सहगल साहब ने कहा, ठीक है तुमको हीरो ले लेते हैं, एक तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट के लिए दिन वगैरह भी तय हो गया, लेकिन दत्त साहब बहुत नर्वस थे। इसके बाद क्या हुआ करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। राइट है, मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्च।

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

The very charming Sunil Dutt sahab aur unki life story. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke saath. तो अर्ली 50s में दत्त साहब पढ़ाई कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, रेडियो सलोन रेडियो स्टेशन में एक आरजे की जॉब. इसी जॉब में जब वो 1953 में स्टिल इन कॉलेज ही वाज, शिकस्त फिल्म के सेट पे गए तो फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया. और जिस दिन दत्त साहब को स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना था वो बहुत नर्वस थे. टेस्ट के लिए पहुंचे तो उनको जो कपड़े पहनने को दिए गए वो दिलीप कुमार साहब के कपड़े थे, जो दत्त साहब को काफी छोटे पड़ गए. उनको अपना अपीयरेंस बहुत पानी लग रहा था और इससे वो और नर्वस हो गए. किसी तरह से डायलॉग वायलॉग बोलकर वो वहाँ से भाग गए और पलट के सहगल साहब से बात ही नहीं की. कुछ टाइम बाद सहगल साहब का असिस्टेंट उनको उनके कॉलेज में ढूंढता हुआ आया और उसने कहा कि भाई चलो, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था. और जब सहगल साहब ने दत्त साहब को उनकी पहली फिल्म ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाई पहले पूरी करूँगा. ये सुन के सहगल साहब ने उनको गले से लगा लिया और बोला कि भाई तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है, तुम पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद फिल्म शुरू करेंगे. ये थी 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म. यहाँ से गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद. मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची.

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची 89.6 मिर्ची पुरानी चीज विद चारू ओनली

0: सुनील दत्त साहब की फिल्मी जर्नी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की मूवी से। इस रेलवे प्लेटफॉर्म से जो गाड़ी निकली तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन पे पहुंची, विच वॉज मदर इंडिया इन 1957, जिसने सुनील दत्त को एज दिस प्रोमिसिंग एक्टर एस्टैब्लिश कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस एज दिस बागी बच्चा बिरजू तो कमेंडेबल थी ही। उस टाइम के हिसाब से इस तरह का रोल करना जिसमें कुछ नेगेटिव शेड्स भी हो, ये बहुत बोल्ड था। इस इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ को तो बूस्ट दिया ही, उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट कर दी। इसी फिल्म के सेट पे उनका और नरगिस जी का इश्क हुआ था ना, जिसके बारे में हम बड़े प्यार से आराम से अगले आर में बात करेंगे। वैसे जैसे ही दत्त साहब की लाइफ में लेडी लक आया, उनकी तो निकल पड़ी। 1960s सुनील दत्त साहब का गोल्डन पीरियड था, जहां उन्हें अलग अलग तरह की फिल्में, रोल्स मिले, अवार्ड्स मिले, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर बने। ही वॉज अ स्टार। इस टाइम दत्त साहब का चार्म पीक पर पहुंचा विद हिज अडोरेबल परफॉर्मेंस एज भोला इन पड़ोसन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अरे है। La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

आज पुरानी जीन्स पर हम मिल रहे हैं दत्त साहब यानी कि सुनील दत्त की लाइफ एंड फिल्मी जर्नी से। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। देखिए वैसे तो दत्त साहब को बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, लेकिन अलग से अवार्ड्स की बात करें तो उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1964 में उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म मुझे जीने दो में उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे उन्होंने एक डाकू का रोल निभाया था जिसे सच्चा प्यार सुधार देता है। फिर 1964 में उन्होंने एक बहुत ही यूनिक फिल्म बनाई थी यादें। ये इंडिया की पहली फिल्म थी जिसमें एक सिंगल एक्टर था, दैट वाज सुनील दत्त। उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी। इस फिल्म में जो बाकी के किरदार दिखाए गए थे ना, वो सिर्फ आवाजों के द्वारा दिखाए गए थे। इस फिल्म का नाम सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही नहीं दर्ज किया गया बल्कि इसे उस साल बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1968 में सुनील दत्त साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2005 में मरण उपरांत दादा साहेब फाल्के अकेडमी द्वारा फाल्के रत्न अवार्ड भी मिला। 1965 में एक फैमिली ड्रामा मूवी खानदान में एक डिफरेंटली एबल्ड बेटे का किरदार निभाने के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसी फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी। ओए होए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनकी प्रेम कहानी किसी भी फिल्मी प्रेम कहानी से बहुत ज्यादा फिल्मी है। आई एम श्योर आपने सुनी होगी कि मदर इंडिया फिल्म के सेट पे फायर एक्सीडेंट हुआ, नरगिस जी आग में फंस गई और हमारे ये हीरो आग में कूद गए उनको बचाने के लिए। नरगिस जी को थोड़ी सी इंजरीज आई लेकिन सुनील दत्त को काफी इंजरीज आई। तब 2 हफ्ते तक नरगिस जी ने उनके जख्मों पे मरहम पट्टी की, उनका ख्याल रखा और बस ऐसा करते करते लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत हो गया। फिर शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन आपको पता है ये दोनों मदर इंडिया के सेट पे पहली बार नहीं मिले थे। एक्चुअली उसे मुलाकात बोलेंगे या नहीं, अर्ली 50s में जब दत्त साहब कॉलेज में थे और रेडियो सलोन में एज रेडियो फिल्म रिपोर्टर जॉब भी कर रहे थे, तब वो अपने बॉस के साथ 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बॉलीवुड क्रश नरगिस जी को देखा था। नरगिस जी ने उनको देखा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन दत्त साहब तो मेस्मराइज्ड हो गए थे। शायद कस्मे खाने, वादे साथ निभाने, घर बसाने के ख्वाब भी देखने लगे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन।

सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी बहुत अमेजिंग और इंट्रीगिंग भी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो नरगिस जी एक सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि दत्त साहब एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिल्मों से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट दत्त साहब ने जब नरगिस जी को 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर पहली बार देखा था, तब वो एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करते थे। नरगिस जी तब राज कपूर जी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसका उनको कोई सुखद अंत नजर नहीं आ रहा था। वो शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। 1956 में उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर लिया। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद आरके फिल्म्स के बाहर कोई फिल्म यानी कि मदर इंडिया साइन की। ये तो उन्हें करना ही था क्योंकि उन्हें दत्त साहब से जो मिलना था। नरगिस जी ने ये तक कहा था कि अगर दत्त साहब उनकी लाइफ में नहीं आते तो शायद वो अपनी लाइफ खत्म कर लेती। नरगिस जी के चले जाने के बाद एक इंटरव्यू में दत्त साहब ने कहा था कि कई बार हमें लगता है कि वो हमारा अपना जब चला गया उसके बिना हम कैसे जिएंगे, लेकिन जी लेते हैं क्योंकि उसकी यादें साथ होती हैं और उसके साथ जो सपने देखे होते हैं वो पूरे करने होते हैं। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को डार्लिंग जी कहकर बुलाते थे। हाउ अडोरेबल। हैट्स ऑफ टू दिस लव स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.

उस्ताद गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। संजू फिल्म याद है ना, जिसमें दत्त साहब संजू को तीन उस्ताद गाने बताते हैं। एक तो दत्त साहब की ही फिल्म थी हमराज, जिसका गाना था न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। दूसरा हाथी मेरे साथी का, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और एक ये वाला कुछ तो लोग कहेंगे। सुनील दत्त साहब की बात आज हम कर रहे थे और उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ें, जानें, समझें तो कितना कुछ है सीखने को। लाइफ में हमारे साथ जब कुछ गलत होता है, अनफेयर होता है, हम शिकायत वाले मोड में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बिटर हो जाते हैं या नफरत करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। दत्त साहब ने भी अपनी लाइफ में बचपन से ही काफी कुछ देखा, लेकिन उससे उनके मन में कड़वाहट या नफरत नहीं आई, बस मोहब्बत और काइंडनेस आई। He was an honest, humble, handsome man who just loved. उनकी लाइफ की लर्निंग्स आर टू बी सेलिब्रेटेड। Hats off to the very charming Dutt Sahab. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.